आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पहले दिशा निर्देश के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। नई दिल्ली में कल संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त नूपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सीजेपी को पहले भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी, लेकिन पार्टी ने निर्धारित दिशा निर्देशों और दिए गए आश्वासनों का पालन नहीं किया। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। इसका उद्देश्य लोगों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। उन्होंने चेतावनी दी कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि प्रस्तावित सभा के लिए जरूरी अनुमति नहीं ली गई थी। पुलिस के अनुसार

0: आपत्ति दर्ज कराने या नाम हटाने के लिए भरे जाने वाले फॉर्म 7 के आवेदनों की संख्या सीमित कर दी है। अब दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि के दौरान कोई भी मतदाता अधिकतम 10 आवेदन कर सकता है। वहीं मतदाता सूची के लगातार अद्यतन के दौरान हर महीने अधिकतम 5 आवेदन जमा किए जा सकेंगे। आयोग ने संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा है। आयोग ने कहा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से फॉर्म 7 के जरिए आपत्तियां दर्ज कराने पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह फैसला किया गया है। विपक्ष के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के कामकाज पर कथित आरोपों के मुद्दे पर कल शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति को विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों की सेहत, पोषण और सर्वांगीण विकास पर ज्यादा ध्यान देने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल महिला एवं बाल विकास पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने जन भागीदारी पर जोर दिया और आंगनवाड़ियों को सामुदायिक भागीदारी का केंद्र बनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने तेजी से बदलती तकनीक के दौर में युवाओं से अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाने और नई तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर शंघाई में आयोजित वैश्विक कौशल प्रतियोगिता 2026 में भाग लेने वाली भारतीय टीम के सदस्यों से बातचीत के दौरान ये बात कही। सर्वोच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति और यूनिसेफ के सहयोग से नई दिल्ली में आज किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के 10 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श कार्यक्रम आयोजित करेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज झारखंड में देवघर का दौरा करेंगे। इस दौरान वे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स देवघर के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। रांची में कल दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। श्रृंखला का तीसरा मैच कल इंदौर में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना रकेल। The Delhi police has denied permission for the proposed protest by the CJP at Jantar Mantar in the national capital today, citing previous violations of guidelines and public safety concerns. Addressing the media in New Delhi yesterday, Delhi Police Joint Commissioner Nupur Prasad said applications seeking permission to hold protests or other programs at Jantar Mantar must be submitted at least 10 days in advance. Ms. Prasad noted that the CJP had previously been granted permission to hold a protest at the venue but had failed to comply with the prescribed guidelines and the undertakings given by the party.
2: We have received an application from Sarov Das, co-convener of Cockroach Janata Party. The application is regarding an intimation for protest on 10th of October at Jantar Mantar. The protest was regarding accountability of CEC. This intimation was considered and it was found that the intimation was given in a very short span of time, whereas as per the prescribed guideline, the intimation has to be received 10 days prior to the protest which is planned.
1: Ms. Prasad further stated that prohibitory orders under Section 163 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita are currently in force in the area and warned that Delhi police will take appropriate legal action against anyone found violating the law. Meanwhile, security arrangements have been strengthened across the national capital. The Delhi Metro Rail Corporation DMRC has announced that entry and exit facilities at 45 metro stations will remain closed till 6 this evening for security reasons. The situation will be reviewed by security agencies and further updates will be issued accordingly. Namo Bharat train services between Saraikale Khan and New Ashok Nagar stations in Delhi will remain suspended till 10 p.m. tonight. Prime Minister Narendra Modi has called for greater focus on the health, nutrition,

0: 22 तक रूस के डीजल ईंधन की बिक्री और आयात पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। इसमें रूस के डीजल ईंधन की बिक्री, वितरण, अनलोडिंग और आयात से संबंधित लेनदेन को अधिकृत किया गया है। भारत के पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। उधर रांची में कल दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है।
1: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
2: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
1: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
2: आज ही www.pgportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
1: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में सीजीपी के प्रदर्शन के बीच श्री नवीन ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारे पर ये काम कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश पूरी तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है।

0: और लगातार वैश्विक संकटों के बावजूद आज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है।
1: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर यह विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत के विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे हैं। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पे आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मनसूबे को पानी फेरेंगे।
0: गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने और विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी आ रहे सीजेपी समर्थकों को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। ये प्रदर्शन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के लिए प्रस्तावित है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति नहीं दी है। पुलिस ने इस संबंध में सीजेपी द्वारा पहले किए गए दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नुपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना आवश्यक है। राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुरक्षा कारणों से आज 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रखने की घोषणा की है। सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और इसके अनुसार आगे की जानकारी दी जाएगी। प्रभावित स्टेशनों में जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस शामिल हैं। इन स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा जारी रहेगी। हालांकि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर यह सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी। दिल्ली में सरायकाले खां और न्यू अशोक नगर के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं आज रात 10 बजे तक निलंबित रहेंगी। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने भी आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। इसमें यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के जोधपुर वायु सेना स्टेशन पर बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2026 के प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यह अभ्यास 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ मित्र देशों ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो परमाणु धमकियों से डरने वाला नहीं है और किसी भी आतंकवादी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के वरिष्ठ सलाहकार अनमोल शेर बेदी ने जिनेवा निरस्त्रीकरण सम्मेलन में कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति की बैठक में ये बात कही। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद अमरीका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस के डीजल ईंधन की बिक्री और आयात पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल रात इस निर्णय की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने महालया के पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर जारी एक संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कामना की कि मां दुर्गा का आशीर्वाद समाज में सुख, करुणा और नई उम्मीद लेकर आए। उन्होंने चारों ओर शांति और समृद्धि की भी कामना की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। राष्ट्रीय राजधानी में रेल और मेट्रो सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और लोकतंत्र में जनता का विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत पड़ोसी देशों और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रहा है। उन्होंने दोहराया कि आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अंतर्गत सशस्त्र बलों में बड़े बदलाव हो रहे हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की और बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और कड़े इंतजाम किए हैं। नई दिल्ली जिले में कई जांच चौकियों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के उपायुक्त कुमार अभिषेक ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के लिए एहतियाती जांच की जा रही है।
1: नई दिल्ली में आज जो प्रोटेस्ट डिक्लेयर किया गया है उसके मद्देनजर यहाँ पे प्रिवेंटिव चेकिंग लगाई गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फीमेल स्टाफ भी है और हम लोग तमाम गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। किसी भी तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं और यहाँ से अभी कुछ देर पहले कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है जो कि आज के प्रदर्शन में शामिल होने वाले थे।
0: इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के उपायुक्त विकास कुमार ने कहा कि नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात नियंत्रण के कारण वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जा रहा है।
2: हमने कल शाम को एक ट्रैफिक एडवाइजरी इशू की थी और उसमें हमने बता दिया था कि कुछ रास्ते हैं जिन पे ट्रैफिक रेस्ट्रिक्टेड रहेगा और जो बाकी रास्ते हैं जैसे नई दिल्ली अगर कनेक्ट कर रहा है दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को तो वहां पे हम ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहे हैं और हम पब्लिक को फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि जो आम नागरिक है उसको ट्रैफिक मूवमेंट में कोई बाधा ना आए।
0: राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार बंद रहेंगे। एक रिपोर्ट।
3: जंतर मंतर पर आज प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रेलवे के पुलिस उपायुक्त बी भरत रेड्डी ने बताया कि दिल्ली के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के 334 कर्मियों को तैनात किया गया है जिनमें लगभग 120 महिला कर्मी शामिल है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियों की तैनाती का अनुरोध भी किया गया है। वहीं सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रहेगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और आवश्यक जानकारी साझा की जाएगी। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन और उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम स्टेशन के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेंगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में यातायात मार्गों में बदलाव को लेकर परामर्श जारी किया है। पुलिस ने यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रेलवे ने आज सुबह

0: 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली, तिलक ब्रिज और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली कई रेलगाड़ियां भी रद्द कर दी हैं। रेलवे के अनुसार कल दोपहर 2 बजे से के बाद अपने प्रारंभिक स्टेशनों से रवाना हुई और आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली तथा हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी प्रारंभिक स्टेशन से ही रद्द कर दी गई हैं। रेलवे ने बताया कि इन स्टेशनों के आसपास सड़कों पर यातायात की समस्या की आशंका को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने भी आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसमें यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने और विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी आ रहे CJP समर्थकों को रोकने के एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में केंद्रीय गृह सचिव ने CJP की प्रस्तावित भीड़ जुटाने की कार्रवाई को कानून व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के लिहाज से गंभीर मामला बताया। गृह सचिव ने उच्चतम न्यायालय के वर्ष 2018 के आदेश का भी उल्लेख किया और निर्धारित क्षेत्रों में सभाएं करने से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया। मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और कानून का पालन सुनिश्चित करना अधिकारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी CJP नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश पूरी तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और लगातार वैश्विक संकटों के बावजूद आज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है।
1: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर ये विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत की विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पे आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मंसूबे को पानी फेरेंगे।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के भोपाल में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जनता का भरोसा नहीं जीत पा रहा है, इसीलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है।
2: एक तरफ जनता विकसित भारत के निर्माण के लिए मोदी जी के साथ खड़ी है और दूसरी तरफ विपक्ष निराश मैदान में जीत नहीं सकता, जनता का विश्वास प्राप्त कर नहीं सकता, इसलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर रहा है, लोकतंत्र में विश्वास को तोड़ने की साजिश रच रहा है, संविधान को तार तार कर रहा है। और ये विपक्ष केवल यही नहीं कर रहा, विदेशी ताकतों के समर्थन से ये कर रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आधुनिक युद्ध और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत अपने पड़ोसी देशों और दुनिया भर के देशों के घटनाक्रमों और उनके रणनीतिक प्रभाव पर बारीकी से नजर रख रहा है। जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर तरंग शक्ति 2026 अभ्यास को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि स्थापित विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है, जबकि उभरती वैश्विक व्यवस्था का स्वरूप अनिश्चित बना हुआ है।
4: टेक्नोलॉजी एंड म्यूचुअल कॉन्फिडेंस कम टुगेदर।
5: जब तकनीक और आपसी विश्वास एक साथ आते हैं तो यही हमारी साझेदारी की असली ताकत बनती है। आइए इस भावना को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे से सीखें, नए प्रयोग करें और अपनी क्षमताओं को मजबूत करते हुए एयरोस्पेस तथा रक्षा सहयोग के क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि हमारी ताकत का इस्तेमाल शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए हो।
0: वायुसेना स्टेशन पर हवाई प्रदर्शन देखने के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के मार्गदर्शन में भारतीय सशस्त्र बल अपनी संरचना, क्षमताओं और रणनीतिक दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन से गुजर रहे हैं। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के अलावा 7 देशों ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं भाग ले रही हैं। इसमें F-35 लाइटनिंग 2, राफेल और F-16 सहित कई उन्नत युद्धक विमानों के साथ परिवहन एवं हवा

0: में ईंधन भरने वाले विमान शामिल हैं। पावर इन पार्टनरशिप थीम पर आयोजित इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाली वायुसेनाओं के बीच आपसी तालमेल बढ़ाना, सैन्य सहयोग को मजबूत करना और परिचालन अनुभवों का आदान प्रदान करना है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के सहयोग से आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में संयुक्त रूप से रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इंडिया 2026-27 का आयोजन किया। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 300 विद्यार्थियों ने रोबोटिक्स के माध्यम से अपनी रचनात्मकता, नवाचार और समस्या समाधान कौशल का प्रदर्शन किया, जिससे प्रौद्योगिकी सहयोग और नवाचार की भावना को प्रमुखता मिली। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देवघर का एम्स संतुलित और समावेशी विकास का एक उत्कृष्ट प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने एम्स के दूसरे दीक्षांत समारोह में उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के हर हिस्से में उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में पूनमल्ली और वडापलानी के बीच 14 किलोमीटर से अधिक की मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 अमृत भारत स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आईआईटी मद्रास स्थित ब्रेन सेंटर का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के अटूट संकल्प के साथ जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि खेल महाकुंभ से लेकर खेलो इंडिया जैसी पहलों से इस दृष्टिकोण को वास्तव में कैसे बदला जा रहा है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के खेल क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इसका सीधा प्रभाव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों के पदक प्रदर्शन में भी दिखाई दिया है। 2010 में खेल महाकुंभ से लेकर खेलो इंडिया तक सरकार ने जमीनी स्तर से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तैयार करने की दिशा में कई पहल शुरू की है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने संबोधन में भी खेल व्यवस्था को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई थी।
3: भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। स्पोर्ट की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं।
2: हाल ही में संपन्न एशियाई खेलों में भारत ने 85 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया और चौथा स्थान हासिल किया। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी TOPS, राष्ट्रीय खेल नीति और फिट इंडिया अभियान जैसी पहले भी इसी दिशा में किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है। राष्ट्रीय खेल नीति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बनाने पर भी जोर दिया गया है। इस दिशा में राज्य सरकारें भी सक्रिय भूमिका निभा रही है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। भारत ने आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की चौथी समिति में वी उपनिवेशीकरण पर चर्चा के दौरान जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये बात कही। भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी विकल्प शुक्ला का आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे वर्तमान में आकाशवाणी रायपुर में उपनिदेशक के पद पर कार्यरत थे। वे 1993 बैच के अधिकारी थे और पत्र सूचना कार्यालय में उनकी पहली नियुक्ति हुई थी। मौसम विभाग ने आज बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन में पूर्वी भारत के कुछ और हिस्सों, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग और पूर्वोत्तर भारत के कई क्षेत्रों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी हो रही है। आज महालया पर्व है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में मनाया जाने वाला यह त्योहार माँ दुर्गा के आह्वान का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने महालया के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर

0: पर सुलभ, किफायती और जन केंद्रित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित 53 टेलीमानस सेल और 48 लाख से अधिक कॉल प्राप्त होने के साथ मानसिक स्वास्थ्य सहायता अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। राष्ट्रीय राजधानी में रेल और मेट्रो सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और लोकतंत्र में जनता का विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत पड़ोसी देशों और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। और बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी हैदराबाद केंद्रम।

महबूब की मेहंदी फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, शब्दकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फरमाइश भेजी आप सभी श्रोताओं ने संतोष मिरजकर पुणे महाराष्ट्र से और अमित खातरकर, निहारिका शिवपाल यादव, अनामिका अवंतिका, शिवालिका पारस मणिवाग, पंजाब राव और संदीप पाटिल ने फरमाइश भेजी थी सारथी जिला बैतूल से। इसी गाने के लिए फरमाइश आई थी सतीश पिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाखी, लखविंदर सिंह संधू, महावीर संधू और इनका पूरा परिवार मालोट कैंप पंजाब से, माधव नामदेव, सीमा नामदेव जबलपुर मध्य प्रदेश से, देवशंकर तामोरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी पूजा, राधिका प्रभा देवी और इनके पूरे परिवार की ओर से फरमाइश आई थी बालोद छत्तीसगढ़ से। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत, ये फिल्म याराना किशोर कुमार की आवाज है।

याराना फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। किशोर कुमार की आवाज में अनजान के बोल थे, राजेश रोशन का संगीत था। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता खुर्सीपार भिलाई छत्तीसगढ़ से सतीश चौहान, शिवम और निर्मला चौहान, और पप्पू राजा खुशदिल, संगीता जिंदल, हंसमुख जिंदल, इन्होंने फरमाइश भेजी है चकला बाजार सामना से। और ये फरमाइश आई है हिंगोली महाराष्ट्र से, शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान उत्तम और इनके परिवार के अन्य लोग, जाखूद राजस्थान से पूजा खटक, निर्मला देवी, शंभू दयाल खटक और इनके मित्रगण, बीड शहर से रणजीत कुमार नामदेव, शोरात रितेश, आकाश रश्मि, रंजना और गबरू। और फरमाइश आई है, इन्होंने नाम भेजे हैं जयराम पाटिल, मंजू, बालीराम पाटिल, शरीफा, नेहा, संध्या, गोलू, तनिष्का, रावी, देवांश और इनके पूरे परिवार की ओर से फरमाइश आई है इंदौर से। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत ये।

लता मंगेशकर की आवाज में ये था आंखें फिल्म का गाना। रचना थी साहिर लुधियानवी की, संगीतकार थे रवि। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता कापसी रोड अकोला से संतोष राव बाकड़े, ज्योति ताई, पवन कुमार और इनका पूरा परिवार, बिलासपुर से बागमारे परिवार, और फरमाइश आई थी गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, रविन्द्र रौनक सेन की ओर से, हिवरखेड़ से वासुदेव वाघ, लक्ष्मीबाई वाघ, संजय, ज्योति, आनंदी और इनके परिजन, बेरडी से हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक, प्राची और तनु।

किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गाना, संगीत राहुल देव बर्मन का और फिल्म थी अनामिका। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव और इनका पूरा परिवार, और कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बरता, नीलम बरता, नीतन नितिन, पलक, कर्ण, गीतू, निहारिका और हार्दिक। और फरमाइश आई थी हमारे इन श्रोताओं की ओर से शैलेंद्र पाटिल, शांताबाई पाटिल, सिद्धि सृष्टि और इनका पूरा परिवार, शिंदे चौक सोलापुर महाराष्ट्र से। छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से फरमाइश आई गन्नूलाल रजक, केआरएस, अश्विनी कुमार और गणेश राव की ओर से। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश।

सावन को आने दो इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे यशुदास की आवाज में, संगीतकार राजकमल थे और फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता गुरुमीत सिंह तंगौरी, जसवीर कौर और इनका पूरा परिवार ग्राम तंगौरी से फरमाइश आई थी। नारायण प्रसाद वर्मा, मयंक जीत वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, पुष्पांजलि वर्मा की ओर से फरमाइश आई थी नवगढ़ कटई जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। रविन्द्र गद्रे, सुभाष गद्रे, दिगंबर गद्रे, राजेश गद्रे और सृष्टि की ओर से फरमाइश आई बरगी नगर जबलपुर से। और इसी गाने के लिए फरमाइश आई थी अहिल्या नगर से के जैन और रंजीता की ओर से। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत, ये प्रोग्राम का आखिरी गाना।

बेमिसाल फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की तर्ज। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता बहरामपुर खरगोन मध्य प्रदेश से तिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक, अमित वर्मा और इनका पूरा परिवार, और साथ में इशिका वर्मा, अंजलि, श्वेता वर्मा का भी नाम है। गोवर्धन जिला वाशिम से रविन्द्र पवार, मीना पवार, श्रीकांत और इनके अन्य साथी। शिक्षक नगर दुर्ग

0: छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन रानी और इनके परिजन। और जिला नांदेड़ हिम्मतनगर से ये फरमाइश आई है वाशीनाथ ये उलकर, बबीता, अनिष्का, तन्मय और इनके अन्य साथियों की ओर से फरमाइश आई है। और गुलबदन, गुरुदर्शन, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और इनके साथियों की ओर से फरमाइश आई है जिला तरन तारण पंजाब से। इसी के साथ आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। चलने से पहले आपको बताते हैं इस कार्यक्रम की प्रोड्यूसर तेजश्री कामले अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: यह है विविध भारती।
2: नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपको सुनवाते हैं सुरेंद्र गुलाटी का लिखा नाटक प्लास्टिक की घास। आज आप सुनेंगे इस नाटक का पहला भाग। निर्देशक हैं दीना नाथ।

0: नई दिल्ली 17 जून। मौसम बिल्कुल नॉर्मल यानी बेहद गर्म और खुश्क। सूरज अपने सही वक्त पर यानी 5:23 पर तुलू हुआ और इस वक्त यानी सुबह के 8:59 पर पूरे आबोताब से रोशन है। लोधी रोड के सरकारी क्वार्टर F2 15/614 के बाहर श्री HP शर्मा के नाम की छोटी सी नेम प्लेट को मामूल के मुताबिक मिसेस शर्मा साफ कर रही हैं। बाहर कमरे में 1930 के मॉडल का क्लॉक अपने मामूल के मुताबिक टिक टिक टिक टिक चल रहा है और जैसे ही क्लॉक की बड़ी सुई 12 के डिजिट तक पहुंचती है क्लॉक अपने मामूल के मुताबिक 9 बजने का ऐलान करता है और इसके साथ ही शर्मा जी अंगड़ाई लेकर उठ खड़े होते हैं। ना, शर्मा जी उन लोगों में से नहीं जो 9 बजे तक पड़े पड़े सोते रहते हैं और अपनी जिंदगी का कीमती वक्त जाया करते हैं। शर्मा जी तमाम जिंदगी बाकायदा सुबह 5:30 उठते रहे हैं। स्नान आदि से फारिग होकर बाकायदा सुबह की सैर के लिए निकलते हैं। पूजा पाठ करने के बाद नाश्ता करते हैं और फिर ठीक 8 बजे सिर्फ घंटा भर के लिए छोटी सी झपकी लेते हैं ताकि ताजा दम होकर दफ्तर पहुंचे। उनका कहना है,
1: दफ्तर में ओंघने वाले लोगों से मुझे सख्त नफरत है।
0: अंगड़ाई लेकर उठ चुकने के बाद रोजाना के मामूल के मुताबिक तौलिया लेकर शर्मा जी बाथरूम में घुसते हैं और मिसेस शर्मा रसोई में। शर्मा जी बाथरूम से बाहर निकलकर साथ वाले बेडरूम में झांकते हैं। बड़ा लड़का किशन या कृष्ण कुमार बुशर्ट और खाकी पैंट पहने अखबार पढ़ रहा है। उनकी लड़की उषा शर्मा मामूली सी सूती साड़ी पहने किसी गाइड में से कॉपी पर नोट्स लिख रही है। उससे छोटा बेटा विनय कॉलेज जाने के लिए अपनी किताबें इकट्ठी कर रहा है। यानी शर्मा जी को शिकायत का कोई मौका नहीं, सब कुछ ठीक है। वो बाहर के कमरे की तरफ पढ़ते हैं। एन उसी वक्त मिसेस शर्मा खाने का डिब्बा शर्मा जी को थमा देती है जिसे शर्मा जी अपने थैले में डाल थैला साइकिल के हैंडल पर टांग देते हैं। साइकिल की गद्दी के नीचे से छोटा सा कपड़ा निकालकर गद्दी और हैंडल साफ करते हैं। पहियों की हवा और ब्रेक चेक करने के बाद जैसे ही साइकिल की घंटी पर उनका हाथ पहुंचता है क्लॉक 9:15 का ऐलान करता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। पिछले 25 वर्षों से वो सदा ऐसा ही करते आ रहे हैं। उनका कहना है,
1: चलने से पहले साइकिल के ब्रेक्स और घंटी जरूर चेक कर लेनी चाहिए। सेफ्टी से
0: घर से दफ्तर का रास्ता सिर्फ 20 मिनट का है, इसलिए वो दफ्तर हमेशा 9:35 पर पहुंचते हैं। यानी दफ्तर शुरू होने के 5 मिनट बाद। वक्त से पहले या ऐन वक्त पर दफ्तर पहुंचने वालों के बारे में शर्मा जी का कहना है,
1: सिर्फ 3 किस्म के लोग दफ्तर में वक्त से पहले पहुंचते हैं। एक वो जो अपने अफसरों के खुशामदी है ताकि अफसरों के आने पर उठकर उन्हें गुड मॉर्निंग सर कह सके। दूसरे वो जिनकी घरेलू जिंदगी इतनी नाखुशगवार है कि नाश्ता दफ्तर में आकर करते हैं। तीसरे वो जो दूसरों की मेजों से स्टेशनरी चुराते हैं और दूसरी हेरा फेरियां करते हैं।
0: चुनाचे आज भी अपने उसूल और मामूल के मुताबिक श्री HP शर्मा दफ्तर के लिए रवाना हुए। उनके रवाना होते ही रोजाना के मामूल के मुताबिक

0: शर्मा बाहरी कमरे में आकर लेट गई। मिस उषा शर्मा ने झटपट साड़ी उतारी और लो कट स्लीव लेस फड़कदार कुर्ता पजामा पहना। कृष्ण कुमार ने अखबार फेंका, जेब में सिगरेट माचिस डाली और घर के बाहर। विनय ने अलमारी से नीली जीन्स और आई लव यू वाली टॉप निकाल सीटी बजाते हुए बाल संवारने शुरू कर दिए। 17 जून का दिन सबके लिए बिल्कुल नॉर्मल था। सब कुछ बिल्कुल वैसे हो रहा था जैसा कि सदा से होता चला आया है। इंसान गुजरते वक्त के तजुर्बों, अपनी उमंगों और अपनी ख्वाहिशों की बुनियाद पर आने वाले कल के रंगीन ख्वाब बुनता है। लेकिन होनी एक अजीब ही चीज है। होनी आने वाले अगले पल की जरा भी आहट नहीं देती, और जब कुछ ऐसा वैसा हो जाता है तो कहते हैं होनी अटल है। कौन जानता था कि 17 जून को होनी क्या रंग दिखाने वाली है। मिसेस शर्मा बाहरी कमरे में पूरी रफ्तार से चल रहे पंखे के नीचे आराम कर रही थी कि अचानक उन्हें बाहर से साइकिल की घंटी की आवाज सुनाई दी।
1: अरे उषा, विनय, अरे किशन, अरे देखो ना बाहर कौन है। अरे देखो ना बाहर जाके के कौन है। तरकारी भाजी वाला हो तो कह देना कि नहीं चाहिए। अरे है, लगता है चले। अरे रुक भैया रुक, मैं अभी आती हूँ, ऐसी भी क्या उतारी। आप कैसे घर चले आए इस वक्त? तब तो ठीक है ना आप? अरे आप ठीक ठाक है ना? क्या हो गया, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? हे भगवान, आप बिल्कुल, क्या कुछ हुआ है? बैठे बैठे मैं पानी लाती हूँ।
2: नहीं।
1: अरे नहीं, इतनी गर्मी है, प्यास लगी होगी, जरूर आपकी तबीयत खराब है। पता ही है ना, क्या बुखार है, कहीं लू तो नहीं लग गई?
2: नहीं नहीं।
1: तो फिर क्या हुआ है बताइए ना, बताते क्यों नहीं? आपको मेरे सिर की कसम, मेरा तो दिल थक थक कर रहा है। ओ, आज सुबह सुबह मेरी आंख भी फड़क रही थी, बताइए ना क्या हुआ है?
2: क्या बताऊं?
1: अच्छा अच्छा, ये तो बता दीजिए कि तबीयत तो खराब नहीं है ना?
2: नहीं।
1: तो फिर और क्या बात है, नौकरी तो आपकी पक्की है, उसका तो कोई भय नहीं, फिर क्या हुआ है?
2: बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा, बहुत बड़ा अन्याय, महान अनर्थ।
1: क्या?
2: ट्रांसफर।
1: ट्रांसफर आपकी?
2: हाँ, आज सुबह ही 10:29 पर यह मनहूस खबर मुझे मिली।
1: हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया?
2: क्या बताऊं लाजवंती, खबर मिलते ही मेरे पांव तले से वो जमीन खिसक गई जहाँ पिछले 25 वर्षों से अपने जूते घिस रहा हूँ। अब क्या होगा लाजवंती?
1: किस्मत फूट गई हमारी, किस्मत फूट गई। हाय हाय, कैसा दुर्भाग्य है हमारा। हाय हाय राम, हाय, अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ?
2: आगरा।
1: आगरा। हाय राम।
3: हाय, क्या हो गया लाजवंती बहन?
4: पहले मैंने भाई साहब को घर लौटते देखा, फिर तुम्हारे रोने की आवाज आई, तो मैंने सुशीला बहन को भी बुला लिया।
3: हाय, कौन तो बहन?
4: कोई आपका सगा था या भाई साहब का?
3: दिल्ली में था कि बाहर?
1: नहीं बहन, ये बात नहीं। आए, जीना मरना तो भगवान के हाथ है। आए, हमारे साथ पूरी अनर्थ हो गया।
3: हौसला रखो बहन, हौसला रखो।
4: अरे बच्चे तो ठीक ठाक हैं।
1: आए भगवान उन्हें लंबी आयु दे, सब ठीक है।
3: बहन फिर हुआ क्या?
1: अरे किस्मत फूट गई हमारी, तो किस्मत।
4: भाई साहब की नौकरी?
1: अरे पक्की नौकरी है उनकी, सरकारी पक्की नौकरी। पर क्या बताऊं? आए क्या बताओ, भगवान ने कैसा अनर्थ कर दिया।
4: अनर्थ?
1: अनर्थ, आए इनकी ट्रांसफर हो गई।
3: हाय राम।
4: सबर करो बहन, धीरज रखो।
5: लाजवंती, हौसला रखो।

0: आस पड़ोस या घर छोड़कर जाना पड़ेगा।
1: बस धीरज रखो बहन, कोई ना कोई उपाय अवश्य निकलेगा।
0: उपाय निकलेगा? अरे क्या उपाय निकलेगा, हमारा तो घर बार ही उजड़ गया।
1: बस बस बहन उठो, देखो पानी वानी पियो, भाई साहब कितनी गर्मी में बाहर से आए हैं, मुंह हाथ धो और इन्हें जलपान कराओ। मन को शांत रखो बहन और इसका कोई उपाय सोचो।
0: ठीक तो कहती हो बहन।
2: तुम कोई फिक्र न करो मिसेस शर्मा, थोड़ी देर आराम कर लो, वो जलपान मैं भिजवाई देती
0: हूँ। नहीं बहन, नहीं नहीं, आप क्यों कष्ट करो।
2: आए कष्ट कैसा, दुख सुख में पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। आओ सुशीला बहन।
3: हाँ हाँ, हौसला रखो बहन, भगवान सब ठीक करेगा।
2: अभी मुन्नी के हाथ पानी वानी भिजवाती हूँ।
4: लाजवंती, क्या सोच रही हो लाजवंती?
5: आपने उसका क्या बिगाड़ा था जिसने आपको यूं उजाड़ा है? कौन है वो, जरा जरा उनसे पूछिए तो।
4: न जाने कौन है।
5: किस कमबख्त ने दिया है ये ऑर्डर?
4: अरे ये ऑर्डर तो ऊपर से आते हैं, न मालूम किस अफसर के दस्तखत हैं। फिर जिसके दस्तखत होते हैं उसको अभी ऑर्डर ऊपर से आते हैं। दरअसल ऑर्डर करने वाला कौन है क्या मालूम।
5: जब आप उसे नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता, तो उस अनजाने कलमुहे ने किस चरम का बैर निकाला है हमारे साथ?
4: किसने क्या बैर निकाला है लाजवंती, ये तो अपने ही पिछले कर्मों का फल है।
6: अम्मा खाना लगा दो तो जरा जल्दी से, मुझे फौरन वापस जाना है।
7: पिताजी आप?
4: कृष्ण तुम
7: इस वक्त यहाँ?
4: इस वक्त यहाँ?
7: आपकी तबीयत तो ठीक है ना पिताजी? अम्मा आप आपकी आंखें क्यों सुर्ख हो रही हैं? बात क्या है?
0: क्या बताऊँ बेटे,
7: हुआ क्या है कुछ बताइए तो।
4: आज सुबह 10:29 पर मुझे ये मनहूस खबर मिली है कि मेरा ट्रांसफर हो गया है।
7: ओह, तो उन्होंने वार कर ही डाला।
4: किसने, किस पर?
7: जालिम हुक्मरानों ने, अपने गुलामों पर।
4: क्या बक रहे हो तुम, कैसे जालिम हुक्मरान, कहाँ के गुलाम? अरे हम एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं।
7: ये सब धोखा है, आप अपने आप को स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक समझते हैं?
4: बेशक।
7: तो फिर आपका ट्रांसफर करने से पहले आपसे पूछा क्यों नहीं गया? इकबाल ने तो अपने शेर में भी कहा है कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी मर्जी क्या है।
4: रजा रजा।
7: अब हाँ हाँ, वही वही मतलब है, जब खुदा को भी बंदे की मर्जी जाने बिना ट्रांसफर करने का हक नहीं है, तो फिर उन्होंने आपकी ट्रांसफर कैसे कर दी, क्यों कर दी? क्या इसलिए कि आप कमजोर हैं, हालात के गुलाम हैं? आपने अपनी जिंदगी के बेहतरीन 25 साल उनकी खिदमत गुजारी में कुर्बान कर डाले और बदले में मौका मिलते ही उन्होंने आपको दूध से मक्खी की तरफ निकाल कर बाहर कर डाला। क्या आप अब भी इनकलाब का नारा नहीं लगाएंगे, इस जबरदस्त नाइंसाफी के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे? मेरे साथ मिलकर बोलिए, इनकलाब इनकलाब।
4: शट अप बदतमीज। तुम नहीं जानते मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, ये गवर्नमेंट क्वार्टर्स है, इस किस्म के नारे लगाना सर्विस कंडक्ट रूल्स के खिलाफ। जरा सोचो ये क्या बक रहे हो तुम, जरा सोचो।
7: आप नहीं समझेंगे पिताजी, आप मुझे सोचने के लिए कह रहे हैं जबकि सोचने की जरूरत आपको है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने तमाम जिंदगी काम किया है, कभी सोचा नहीं। और मैंने कभी काम को हाथ नहीं लगाया, सिर्फ सोचा है।
4: दो वक्त का खाना तुम्हारा बाप जो जुटा रहा है,
7: वो खाना जो 25 साल तक एक बहुत बड़ी मशीन के एक मामूली पुर्जे की तरह काम करने के बदले मालिक आपको देते आ रहे हैं।
4: अरे कौन से मालिक, किसके मालिक, दिमाग चल गया तुम्हारा?
7: चल रहा है दिमाग उन साम्राज्य ताकतों का जिनके हाथ बहुत लंबे हैं, बहुत लंबे, हजारों मील एज द क्रो फ्लाइज, और उससे भी लंबे अगर भाई सी आए तो। हो सकता है पिताजी उनको एक मामूली से पुरसे यानी आपकी सीट की अहमियत का अंदाजा लग चुका हो, या वो यहाँ अपने किसी लोकल एजेंट को बिठाना चाहते हो। ये ट्रांसफर उन्हीं विदेशी ताकतों की एक गहरी साजिश है, दुनिया के बड़े बड़े सरमायादार, ये इंडस्ट्रियलिस्ट।
4: बेवकूफ पागल गधे, तुझे शर्म नहीं आती ऐसे कठिन समय में ऐसी ऊट पटांग बेसिर पैर की हाके जा रहा?
5: जब से इसकी नौकरी छूटी है रोज ऐसी ही बहकी बहकी बातें करता है।
7: नौकरी छूटी नहीं, छोड़ी है मैंने, लात मार दी है गुलामी पर, गुलामी की चिकनी चुपड़ी से आजादी की रूखी सूखी अच्छी,
4: और बेकारी के फाके उससे भी अच्छे। जी चाहता है।

0: ऐसी निकम्मी औलाद को लात मार के घर से बाहर निकाला।
1: हाय हाय, अब घर भी कहाँ रह गया है। मैं कहती हूँ जी, कुछ तो सोचो, ऐसी विपता सिर पर पड़ी है और बाप बेटा आप आपस में झगड़ रहे हैं। आप मिल बैठ के कुछ सोचिए कि अब करना क्या है।
2: आई एम सॉरी डैडी, मुझे क्षमा कर दीजिए। अचानक ऐसी बुरी खबर सुनकर मैं जोश में आ गया था। मेरी पार्टी की ट्रेनिंग ही कुछ ऐसी है।
0: अब निखट्टू बेकारों ने अपनी कोई पार्टी भी बना ली है।
1: ओहो, फिर वही। जाओ जाओ कृष्ण, तुम अपने कमरे में जाओ। आप भी जरा शांत होकर बैठिए, जरा सोचिए तो सही कि करना क्या है।
0: करना क्या है, क्या हो सकता है। ओनी बड़ी बलवान है लाजो, और इंसान बहुत कमजोर।
2: लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसान हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे। आपको कुछ करना चाहिए।
1: और क्या, कुछ ना कुछ कोशिश तो करनी ही चाहिए।
0: अरे तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। आज सुबह ही दफ्तर के तमाम बाबुओं ने फैसला किया है।
2: कल से स्ट्राइक।
0: अरे नहीं बेवकूफ, कल 11 बजे एक मीटिंग होगी जिसमें ये फैसला किया जाएगा कि मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए। मैं सोचता हूँ जो कुछ भी करना है कल की मीटिंग के बाद किया जाए।
3: उसी रोज यानी 17 जून की शाम, वक्त लगभग 5:30 और 6 बजे के बीच, उषा शर्मा कॉलेज से घर लौटी है। वक्त से पहले अपने पिता को घर पर देखकर अचानक ही हड़बड़ा उठी, और हड़बड़ाहट में यह भी भूल गई कि उसने बिल्कुल ऐसे वस्त्र पहन रखे हैं जो मिस्टर शर्मा के कथनानुसार
0: शरीफ खानदान के बेटे बेटियों का पहरावा नहीं है। ये पहरावा कम है, दिखावा ज्यादा।
3: बाहरी कमरे में उषा शर्मा की एंट्री के वक्त कुछ तो रोशनी फीकी सी थी, कुछ मिस्टर शर्मा की तबीयत निढाल, शायद आंखें भी अधमुंदी सी थीं। शर्मा जी को यकीन है कि सब कुछ बहुत साफ नहीं था, इसलिए उषा की आवाज सुनते ही
4: मामी मामी। पिताजी आप? बाप रे,
0: कौन?
4: मैं कोई नहीं।
0: कौन? लाजवंती? अरे उषा ही है क्या?
4: उषा? हाँ। नहीं
0: तो कौन घुसा है अभी घर में?
4: उषा।
0: वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि इस घर में हो क्या रहा है, ऐसे कपड़े पहनने की इजाजत किसने दी उसे?
4: ओ, किसे कोस रहे हैं?
0: मैं पूछता हूँ ये कैसा पहरावा है?
1: ओ, पूरी बात तो सुन लिया करो। मैंने कहा उषा की कोई सहेली थी, उषा तो कभी की आई हुई है।
0: बुलाओ उसे।
1: अरे इधर क्या आएगी बेचारी, घर आते ही जब से मनहूस खबर सुनी है बेचारी रोए जा रही है।
0: हे भगवान, मेरा नहीं तो इन नन्हे नन्हे मासूम बच्चों का ही कुछ ख्याल किया होता। विनय लौट आया कॉलेज से?
1: हाँ, वो भी बहुत परेशान था, अपने किसी दोस्त को मिलने गया था, आता ही होगा।
0: सूरज ढलने के बाद बच्चों का घर से बाहर रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
1: आप सूरज ढलने की बात करते हो, हमारे लिए तो अब सूरज हमेशा हमेशा के लिए डूब ही गया है।
0: हौसला रखो लालवंती, कुछ न कुछ उपाय अवश्य निकलेगा, अवश्य निकलेगा। विनय।
5: जी पिताजी।
0: कॉलेज से लौटकर तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए।
5: इफ यू डोंट माइंड पिता, आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ?
0: कैसा सवाल?
5: इतने सालों से आप दफ्तर में काम कर रहे हैं और आपके आसपास क्या हो रहा है इसकी आपको जरा भी खबर नहीं रहती?
0: विनय,
5: आपकी ट्रांसफर होने वाली है, इसकी खबर तक न मिली आपको?
0: खबर आज ही आई है।
5: आज ऑर्डर आए हैं, आप जरा भी होशियारी से काम लेते तो इसकी खबर आपको पहले हो सकती थी।
0: तुम्हारा मतलब क्या है?
5: खबर पहले मिल जाती तो ऑर्डर रुक सकते थे।
0: ऑर्डर? ऑर्डर? ऑर्डर ऊपर से आते हैं, ये कोई मेरे हाथ की बात है?
5: पिताजी आपको ये तो सोचना चाहिए था कि आपकी ट्रांसफर से हमारी जिंदगी, हमारे एजुकेशन, हमारे करियर का क्या बनेगा।
0: तो ट्रांसफर क्या मैं खुद करवा रहा हूँ?
5: लेकिन ट्रांसफर ना हो इसकी कोशिश तो कर सकते थे आप, और ट्रांसफर हुई भी थी तो किसी अच्छी जगह हो सकती थी, बम्बई, लंदन, न्यूयॉर्क, कहीं करवा लेते तो भी इज्जत रह जाती। अब क्लास में किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरे डैडी की ट्रांसफर आगे हुई है? सब कहेंगे आगे के पागल खाने में जा रहे हैं।
0: तू क्या बक रहा है बेवकूफ कहीं का?
5: डोंट माइंड पिताजी, एक बात मैं साफ बताई देता हूँ, मैं दिल्ली छोड़कर नहीं जा सकता।
0: तुम दिल्ली छोड़कर नहीं जा सकते?
5: कैसे जा सकता हूँ, यहाँ मेरा करियर है, एक अपना सोशल सर्कल है।
0: तुम्हारा सोशल सर्कल?
5: मैं आपकी तरह जिंदगी भर दफ्तर में क्लर्क की नहीं कर सकता। अगर आप ट्रांसफर नहीं रुकवा सकते तो आप लोग जाइए, मैं यहाँ हॉस्टल में रह लूंगा।
0: क्या? तो यहाँ हॉस्टल में रह लेगा? और खर्चा कौन देगा?
5: ऑफ कोर्स आपको देना होगा।
0: मैं इस तनख्वाह में तुम्हें हॉस्टल का खर्चा दे सकता हूँ?
5: तो ना सही, मैं कुछ छोटा मोटा काम कर लूंगा।
0: और मेरे इस घर बार के साथ इसके साथ नहीं रहोगे?
5: मैं घर के साथ चिपका रहूं या अपना फ्यूचर देखूं? आज आप ये ट्रांसफर नहीं रुकवा सकते, आगे चले जाएंगे, फिर वहां से निकाल वो

0: वेलू ट्रांसफर कर देंगे, वहां से गाजियाबाद कर देंगे, वहां से धनबाद और धनबाद से फिरोजाबाद। माल गाड़ी की तरह आपको यहाँ से वहां, वहां से यहाँ शंटिंग करते फिरेंगे। हम साथ साथ अपनी जिंदगी कहाँ बर्बाद करते रहेंगे पिताजी?
1: मेरे साथ अपने परिवार के साथ रहने में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है।
2: हे भगवान, मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरी औलाद मुझे इस तरह, मैं सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूर हो जा मेरी नजरों से।
3: विनय, अपने पिताजी के सामने जबान खोलते तुझे शर्म आनी चाहिए।
0: नहीं अम्मा, मैंने ये सब कुछ मैं क्या बताऊं अम्मा, मैं क्या बताऊं? मैं दिल्ली छोड़कर नहीं जाना चाहता, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा।
1: निकल जा मेरे घर से, चला जा यहाँ से, जहाँ तुझे रहना रह ले। बाप का घर छोड़कर दिल्ली में जहाँ रह सकता है रह ले।
3: ओहो, आप क्यों बच्चों पर क्रोध करते हैं? जिसे बाप का घर कह रहे हो वो अब कितने दिन और हमारा है? आए राम, किसे पता था कि एक दिन यूं बैठे बिठाए सारा घर बार उजड़ जाएगा।
0: आई एम सॉरी पिताजी, ट्रांसफर की बात सुनकर मुझे ऐसा शॉक लगा कि मैं न जाने क्या क्या कह गया। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी।
2: तुम लोग क्या समझते हो बेटे, मैं क्या कम परेशान हूँ? पिछले 25 वर्षों में पहली बार दफ्तर से भाग कर आया हूँ और सुबह से इस खटिया पर पड़ा हूँ।
0: लेकिन पिताजी, खटिया पर पड़े रहने से क्या होगा, कुछ कीजिए ना।
2: हाँ, कर रहा हूँ। कल सुबह एक मीटिंग होने वाली है, बस उसके बाद ही कोई एक्शन लूंगा।
4: अगले रोज यानी 18 जून सुबह 11 बजे मिस्टर शर्मा के ऑफिस में।
5: भाई साहब, आजी भाई साहब, जी चालान देखकर जरा इस पर दस्तखत कर दीजिए, एक कैश जमा करवाना है।
6: लंच के बाद आना।
5: लंच के बाद आपका कैश काउंटर बंद हो जाता है
6: तो जनाब? फिर सुबह जरा जल्दी आना था।
5: लेकिन जनाब, वक्त तो अभी भी है।
6: कहाँ है वक्त, 11 बज रहे हैं, स्टाफ की मीटिंग है।
7: अरे ललित बाबू, और 11 बज गए, चलो भाई बड़े बाबू जी की मीटिंग का वक्त हो गया है।
6: चलो।
5: अरे भाई साहब, बस एक मिनट की बात थी, एक नजर देख जाते, बड़ी मेहरबानी होती आपकी। बात यह है, आज पैसा जमा कराना बहुत जरूरी था।
6: कमाल है साहब, यहाँ बड़े बाबू की जिंदगी मौत का सवाल बना हुआ है और आपको पैसा जमा करवाने की पड़ी है। आपके सीने में इंसान का दिल है या पत्थर?
7: ओए चलो ना ललित बाबू, ये पब्लिक तो हमको अपना घरेलू नौकर समझती
6: है। चलो।
8: आओ ललित बाबू, आओ इधर आओ। आओ भाई आओ।
7: नमस्कार बड़े बाबू जी।
6: अरे बड़े बाबू, आप तो बस एक ही दिन में इतने कमजोर लग रहे हैं जैसे महीने भर की बीमारी से उठे हैं।
9: नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है।
8: अरे भैया, ट्रांसफर की चोट लकवे से कम नहीं होती, अचानक आती है और इंसान को अधमुआ करके चली जाती है।
7: फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि बड़े बाबू की बर्दाश्त का जवाब नहीं।
6: सो तो है, पर अब सोचना ये है कि इस ट्रांसफर को रुकवाने के लिए क्या एक्शन लिया जाए।
8: कुछ न कुछ एक्शन तो लिए ही जाना चाहिए। रामलाल, जरा कैंटीन से जरा चाय तो लिया।
10: इतने चाय?
8: यही 4-5, और 4-5 प्लेट बढ़ेगी।
10: और पैसे?
9: ये ले, मैं देता
6: हूँ। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं बड़े बाबू? ये नहीं हो सकता बड़े
7: बाबू, ऐसा नहीं हो सकता।
9: एक ही बात है भैया, एक ही बात है, एक दिन में क्या मैं इतना पराया हो गया?
7: चलो चलो, जैसे बड़े बाबू जी कहते हैं कर लो।
9: ले ले, ये ले 10 का नोट और लपक के ले आ जा।
8: मेरी राय में तो बड़े बाबू, सबसे पहले आपको करमाकर साहब से मिल लेना चाहिए। क्यों भाई?
9: मगर वो क्या कर सकता है?
7: बड़े बाबू जी, आप तो जानते हैं किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को प्रोसीजर में कच्चा नहीं होना चाहिए। देखो ना, वो है आपका इमीडिएट अफसर, उसको बाईपास करके सीधा ऊपर जाना अगेंस्ट द प्रोसीजर हो जाएगा। क्यों भाई?
6: सही बात,
7: सही है।
9: अच्छा तो फिर पहले मैं करमाकर साहब से ही मिल लेता हूँ, और क्या।
8: और फिर आपने तो कितना कुछ किया है करमाकर साहब के लिए।
9: हाँ सो तो है,
6: बस एक नोट लिख दे वो तो रुक गई ट्रांसफर। क्यों भाई?
8: बिल्कुल
9: सही बात,
8: बिल्कुल सही बात,
9: बिल्कुल।
8: आज ही मिल लीजिए,
9: पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी।
8: बिल्कुल ही, आपको अपॉइंटमेंट लेने की क्या जरूरत? अपॉइंटमेंट ली तो मामला भाप, अगला पहले से ही कोई एक्सक्यूज सोच लेगा, बस सीधा जा पहुंचिए उसके पास। क्यों भाई?
11: बिल्कुल ठीक बात है।
9: तो ठीक है, मैं आज ही करमाकर साहब से मिल लेता हूँ।
4: मीटिंग से उठना मिस्टर शर्मा का, और उसी रोज यानी 18 जून को ही जाना करमाकर साहब के पास।
12: मे आई कम इन सर?
13: आओ मिस्टर शर्मा, कम इन। आओ बैठो। कैसे आया?
9: सर आपसे थोड़ा वो एक पर्सनल काम था।
13: हाँ हाँ बोलो।
9: सर वो बात ये थी कि
14: आपने तो इतना कुछ किया करमाकर साहब।
0: सर आपको याद होगा, जब आप दिल्ली आए थे तो आपको स्टेशन पर रिसीव करने मैं ही आया था।
13: हाँ याद है।
0: जब आपको सरकारी क्वार्टर न मिला था तो गुप्ता जी के क्वार्टर का

0: सारा कमरा मैंने ही दिलवाया था सर।
1: याद है बरोबर,
0: पहले 2-3 महीने आपकी सारी फाइलें मैं ही अपनी बाइसिकल पर आपके घर पहुंचाता रहा हूँ।
1: बरोबर।
0: और एक दिन वो भीनी भीनी सुगंध वाला रुमाल जो आप दफ्तर में भूल गए थे, जिस पर अंग्रेजी का शब्द।
1: बरोबर बरोबर मिस्टर शर्मा, हमको सब कुछ याद है। यू हैव डन अ लॉट फॉर मी।
0: आपको सब कुछ याद है?
1: ऑफ कोर्स।
0: अगर सचमुच अपने सारे कैरियर में पूरे फर्ज से ड्यूटी मैंने निभाई है, सच्चे दिल से आपकी सेवा की है, तो बस एक काम कर दीजिए मेरा।
1: बोलो बोलो, क्या काम है?
0: सर, आपको तो मालूम है मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स आ गए हैं।
1: मालूम जरूर है, पर उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। बॉयकॉट, ये ऑर्डर हमारा नहीं है।
0: ये मैं जानता हूँ सर, लेकिन अगर आप चाहें तो ये ट्रांसफर रुकवा सकते हैं।
1: क्या मैं रुकवा सकता हूँ?
0: बेशक सर, बेशक आप रुकवा सकते हैं,
1: लेकिन ऑर्डर तो बहुत ऊपर और ऊपर से आया है।
0: कहीं से भी आया हो सर, ये ट्रांसफर रुकवा दीजिए। सर, मैं घर से बेघर हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा घर बच्चे तबाह हो जाएंगे। सर, मैं
1: ये क्या कर रहे हैं मिस्टर शर्मा?
0: सर, मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, अगर ये बात है तो हम पूरी कोशिश करेंगे। एक बात बोलो मिस्टर शर्मा, आप ट्रांसफर रुकवाना क्यों चाहते हैं?
0: आप क्या पूछ रहे हैं सर?
1: क्यों,
0: हम पिछले सैकड़ों सालों से दिल्ली में रहते आ रहे हैं। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, और उससे पहले सुना है मेरे परदादाजी भी दिल्ली में आने वाली हर हुकूमत में सरकारी मुलाजिम रहे हैं, और आज तक उनमें से कभी किसी का ट्रांसफर नहीं हुआ। जरा अच्छा। सोचिए करमारकर साहब, अगर मेरी ट्रांसफर न रुकती तो शर्मा बिरादरी में मेरी नाक कट जाएगी, खानदान की इज्जत खाक में मिल जाएगी सर।
1: ओ आई सी।
0: हमारे पूर्वज इसी धरती पर जन्मे, इसी धरती पर परवान चढ़े और इसी धरती पर राख हो गए। हमारी नाल घड़ी है सर, नाल घड़ी है इस धरती में। आप ही बताइए, अब इस उम्र में कहाँ परदेश में जाकर भटकता फिरूंगा सर।
1: गवर्नमेंट सर्विस में तो ट्रांसफर होता ही रहता है। अब अपन को ही देख लो, अपने देश शोलापुर से कितनी दूर आकर सर्विस कर रहे हैं।
0: आपकी नाल न घड़ी होगी ना सर वहाँ पर। फिर आप जवान थे, अकेले थे, और वो खुशबू वाला रुमाल।
1: बरोबर, तुम ठीक कहते हो मिस्टर शर्मा, पर ये नाल घड़ी वाली बात समझ नहीं आई।
0: नाल सर, वो नाल बच्चे की पैदाइश के वक्त होती है। नाल क्या बोलते हैं सर उसको? हाँ, बिलिकल कॉर्ड।
1: अच्छा, कभी देखा नहीं।
0: सर, आपकी शादी कहाँ हुई है? बच्चा तो बाद की चीज है ना सर। और फिर अम्बिलिकल कॉर्ड यानी नाल जमीन में गाड़ दी जाती है सर, जमीन में।
1: ओ आई सी।
0: मेरी माँ ने भी धरती में गाड़ दी थी सर।
1: कहाँ?
0: वो घर के आंगन में सर।
1: लोधी रोड के क्वार्टर में?
0: नो सर, पुरानी दिल्ली में।
1: ओ, वो तो 10-12 मील होगा।
0: यस सर।
1: तो नालगढ़ी से कितनी दूर तक जा सकते हो?
0: आप समझे नहीं, है तो अपनी धरती ना सर, सेम सिटी।
1: पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली?
0: सर, है तो दिल्ली ना।
1: यस, यू आर राइट।
0: अब आप समझे ये बात, आप ही समझ सकते थे इसको, ऊपर वाले नहीं सर। बस सर, अब आप सारी बात समझ गए ना, तो सर ये ट्रांसफर रुकवा दीजिए।
1: हम रुकवा सकते हैं?
0: यस सर, आप रुकवा सकते हैं।
1: ओके, हम रुकवा देंगे।
0: थैंक यू सर।
1: नो नो नो नो, व्हाई थैंक मी, इट इज माय ड्यूटी।
0: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, मैं अब चलता हूँ।
1: ओके,
0: थैंक यू सर, थैंक यू।
1: मिस्टर शर्मा।
0: यस सर।
1: आपने ये तो बताया ही नहीं कि ट्रांसफर रोकने के लिए हमको करना क्या होगा।
0: बस सर, आप एक डीओ लिख दीजिए, ये स्पेशल केस है, ये ट्रांसफर रोक दी जाए।
1: इज दैट ऑल?
0: यस सर।
1: ओके, हम लिख देंगे।
0: थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, अब मैं चलता हूँ सर।
1: अच्छा, बट लिसन।
0: यस सर।
1: ये डीओ लिखकर भेजने से ऊपर वाले ये तो ना समझेंगे कि मेरा कोई इंटरेस्ट है। यू नो भाई, ये ऑफिसर लोग बहुत सस्पिशियस होते हैं।
0: सर, आप ये लिखिए ना कि काम बहुत है, शर्मा बहुत पुराना आदमी है, इसको रिलीव नहीं किया जा सकता।
1: हाँ हाँ, ये ठीक है।
0: थैंक यू सर।
1: अच्छा अच्छा,
0: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
1: पर मिस्टर शर्मा।
0: यस सर।
1: वो ये भी तो कह सकते हैं कि ट्रांसफर में एक आदमी लेकर बदले में दूसरा आदमी दे रहे हैं, भाई स्टाफ टैंक वही रहेगी ना।
0: सर, आप जरा स्ट्रॉन्ग डीओ भेजिए ना।
1: सुनो, नालगढ़ी मेंशन कर दें।
0: नो नो सर, वो उनकी समझ में नहीं आएगा सर।
1: मिस्टर शर्मा।
0: यस सर।
1: आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अपना रिप्रेजेंटेशन बनाकर मुझे दे दें, मैं उसे थ्रू प्रॉपर चैनल फॉरवर्ड कर दूंगा।
0: वो तो सर।
1: कोई बात नहीं, हम फौरन पास ऑन कर देगा। भाई तुम तो जानते ही हो, हमारी पोजीशन बस एक पोस्ट ऑफिस की है। जैसे ऊपर का ऑर्डर हमने आपको पास ऑन कर दिया, आपका रिप्रेजेंटेशन ऊपर फॉरवर्ड कर देगा। डोंट वरी, हम पूरी कोशिश करें।

0: Okay, sir.
1: Huh? All the best.
0: Thank you, sir.
1: All the best.
0: Thank you.
2: प्लास्टिक की घास। श्रोताओं, आज आपने सुना इस नाटक का पहला भाग। लेखक सुरेंद्र गुलाटी, निर्देशक दीना नाथ। आपको बता दें, इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुन सकेंगे कल नाट्य तरंग कार्यक्रम में। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कास्टिंग डायरेक्टर गौतम कृष्ण चंदानी से नेहा शर्मा की बातचीत।
2: श्रोताओं नमस्कार। ऐसा अक्सर होता है जब फिल्मी पर्दे पर हम किसी विशेष अभिनेता या अभिनेत्री को किसी किरदार में ढलते देखते हैं तो हमारे मुंह से बरबस ही निकलता है कि ये किरदार इनके अलावा तो कोई निभा ही नहीं सकता था। लेकिन कोई किरदार किसी अभिनेता अभिनेत्री पर कैसा लगेगा या कहें कि किसी खास किरदार में कौन सा एक्टर ढल सकता है, ये पहचानना भी एक कला है और उस कला में माहिर होते हैं कास्टिंग डायरेक्टर। तो क्या होता है इनका काम और किस तरह कागज पर लिखे किरदारों के लिए एक्टर्स का चुनाव ये करते हैं, इन सारे सवालों का जवाब हमें आज मिलने वाला है क्योंकि विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर गौतम कृष्ण चंदानी। तो गौतम जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
3: थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, यहाँ पर मेरा सौभाग्य है, यहाँ बुलाया आप लोग ने मुझे।
2: तो गौतम जी, इससे पहले कि आपके काम के बारे में हम बात करें, आपके बारे में पूछना चाहते हैं कि आप कैसे पले बढ़े और क्या आप मुंबई में रहते हैं या बाहर रहते थे और किस तरह से आना हुआ आपको?
3: नहीं, मैं बम्बई का ही हूँ, यहाँ की पैदाइश है
2: जी।
3: और मेरे मम्मी पापा दोनों डॉक्टर्स हैं तो उनका खुद का एक नर्सिंग होम भी था और वो हमेशा चाहते थे कि मैं मेडिसिन करूं और मेरी बहन ने ऑलरेडी उन्हें कह दिया था कि उसे मेडिसिन में कोई इंटरेस्ट नहीं है
2: जी।
3: तो क्योंकि मेरे पास 18 की उम्र में कोई आइडिया नहीं था कि मुझे करना क्या है लाइफ में, तो मैंने भी मेडिसिन कर लिया कैसे तैसे स्ट्रगल के साथ। और मेडिसिन करते करते मुझे एक्चुअली बीच में एक रीजन से मुझे मेरे आंटी के घर जाना पड़ा बेलगाम में, वहां रोजा फिल्म लगी थी, तमिल में लगी थी मणि रत्नम सर की, तो वो मैंने देखी। और उसके पहले क्या था, मैं फिल्में बहुत देखता था, मतलब छुट्टियों में दिन में 3 फिल्में देखता था वीडियो कैसेट पे VCR पे। पर जब रोजा देखी तो मुझे एक फिल्म देखने वाले से इंटरेस्ट आया कि अब मुझे ना फिल्म में इन्वॉल्व होना है। वो फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ, रहमान के म्यूजिक से और संतोष सिवन की सिनेमाटोग्राफी और मनी सर का डायरेक्शन, एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस। पहली बार एक ऐसे लेवल की फिल्म देखी जो मुझे लगा हाँ ये हॉलीवुड के टक्कर की फिल्म है, और ऐसी फिल्म में पार्ट होना ऐसी फिल्म का बहुत बड़ी बात होगी करके ये मेरे मन में बैठ गया। और फिर मैं अगले दिन फिर अकेले वो ही फिल्म देखने गया और फिर वो और भी फीलिंग स्ट्रांग हो गई। पर तब मैं आई थिंक सेकेंड ईयर MBBS में था और वहां से आई थिंक वो सीड हो गई थी। और वो फिर मैंने कैसे तैसे 3 साल निकाले और इंटर्नशिप की, फिर भी मम्मी पापा मान नहीं रहे थे, बोले कि नहीं तो अस्पताल में तो काम करके देख। फिर मैंने 1.5 साल हॉस्पिटल में भी मैं जूनियर रेसिडेंट था।
2: अच्छा।
3: हाँ, वो भी किया। और मैं सुबह निकलता था बस में, परेल जाना होता था MGM हॉस्पिटल में,

0: मुझे नहीं करना है। तो मैंने आके मेरे मम्मी और पापा को कहा कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मेडिसिन में, मुझे फिल्म्स में कुछ करना है, मुझे पता नहीं क्या करना है, बट आई वॉन्ट टू क्विट मेडिसिन। तो तब तक आई थिंक दे हैड रियलाइज्ड कि हाँ, इसने 1.5 साल अपने दिए, एक अस्पताल में काम भी किया और फिर भी खुश नहीं है, तो फिर रहने दो।
1: तो गौतम जी, पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आमतौर पे लोग जब फिल्म इंडस्ट्री की ओर आते हैं तो सबसे ज्यादा तो एक्टर बनने आते हैं, उसके बाद हो सकता है कोई गीतकार बनना चाहता हो, कोई राइटर बनना चाहता हो, कोई डायरेक्टर बनना चाहता हो, लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर ये बनने का ख्याल कैसे आया आप?
0: मेरी कोशिश रही थी कि मैं असिस्ट करूं और इवेंचुअली डायरेक्ट करूं, तो मेरा रास्ता वैसे शुरू हुआ। मैंने पहले

0: में जाता था और वहाँ अच्छा एक ग्रुप बन गया। हमारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो बहुत अच्छे हुए। वहां से मुझे फिल्म्स डिवीजन के लिए फिल्में बनाने का मौका मिला। मैं और मेरे ग्रुप को, हम चार जन थे, तो हमने गुजरात अर्थक्वेक पे भी कुछ फिल्में बनाई थी। वहां से मेरी जर्नी, वहां फिल्म्स डिवीजन के लिए काम करने के बाद मुझे लगा भी कुछ फिल्म मेकिंग में फिनेस नहीं था, तो मैंने फिर एड फिल्म्स ज्वाइन किए। एक मेरे कजिन ब्रदर की बचपन की दोस्त थी जो एड फिल्म्स में काम करती थी, तो उससे बात की, तो फिर मैंने एक डेढ़ साल एड फिल्म्स में असिस्ट किया। बहुत सीखा उधर, पैसे भी कमाना शुरू किए, अच्छे खासे पैसे भी आते थे, बट मजा नहीं आ रहा था क्योंकि रियलिज्म नहीं था तब। अर्ली 2000 में एड्स बहुत चकाचक चीजें होती थी, ये रियल कैरेक्टर्स और ये सब होते ही नहीं थे।
1: अच्छा।
0: हाँ, तब एड्स बहुत अलग बनते थे 2001-2002 में। फिर मैंने बोला कि अच्छा, डेढ़ साल मैंने काम किया उधर, और फिर मैंने बोला हाँ भाई फिल्म में करना है, कैसे तैसे फिल्म में करना है। तो मैं अप्रोच करता था, श्याम बेनेगल को अप्रोच किया, गोविंद नियालानी को अप्रोच किया, बट किधर कुछ हुआ नहीं। मुझे लगा हाँ रियलिस्टिक फिल्मों में असिस्ट करना है। और फिर मैंने सत्या देखी हुई थी और सत्या का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, और तब अनुराग का नाम सुना था कि उन्होंने पांच करके एक फिल्म बनाई है, और फिर उनके इंटरव्यूज आई थिंक पढ़ता था तभी, आई डोंट नो वीडियो इंटरव्यूज कितने थे उनके, उनका जो विजन था वो मुझे बहुत प्रभावित हुआ। मुझे लगा हाँ इनको असिस्ट करना चाहिए करके, तो उनके पीछे लगा रहा मैं। और एक पॉइंट आया जब मैंने उन्हें कहा कि प्लीज मुझे असिस्ट करने का मौका दो, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं सारा खर्चा उठा लूंगा, बस मुझे सीखने दो। तब उन्होंने आई थिंक मेरा पागलपन देख के बोला कि ठीक है तुम आ जाओ मेरी टीम में।
1: तो जैसे आप उनके पीछे लगे रहे, तो क्या थी ये प्रक्रिया पीछे लगे रहे, मतलब किस तरह से मिल सकते हैं, इस तरह से कैसे आप?
0: मतलब मेरा लक तब था, ये तो 2001-2002 की बात है, तब डीवीडी हुआ करती थी, तो एक डीवीडी लाइब्रेरी थी बंबई के, एक इलाका है बांद्रा, और वहां का जो ओनर था डीवीडी लाइब्रेरी का ओनर, वो बड़े प्यारे इंसान थे छगन भाई, तो अनुराग भी वो लाइब्रेरी में आता था। तो मैंने बोला कि छगन भाई जरा अनुराग से कुछ मीटिंग करा लो यार, मुझे असिस्ट करना है उन्हें। तो उन्होंने फिर मुझे एक ऐसा, जस्ट एक दिन ऐसा रहा कि मैं भी था वहां और वो आए, और उन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन कराया। और वहां से जब उन्हें पता चला कि मैं डॉक्टर हूं जो असिस्ट करना चाहता हूं, तो उनको और भी इंटरेस्ट आ गया कि अच्छा तुम डॉक्टर होके तुम असिस्ट करना चाहते हो। बोला हाँ, अब मैंने छोड़ दिया है मेडिसिन, मुझे बस फिल्मों में असिस्ट करना है करके, वहां से शुरुआत हुई।
1: तो मतलब आपको डायरेक्शन की ओर जाना है, ऐसा आपका इंटरेस्ट आ गया।
0: हाँ।
1: और इसलिए आप फिर अनुराग जी से मिले, तो सीधा कास्टिंग के हिसाब से शुरू हुआ या कैसे शुरू हुआ?
0: मतलब जो एसोसिएट थे राजकुमार गुप्ता
1: जी,
0: जो बड़े डायरेक्टर है रेड वन, रेड टू, आमिर, नो वन किल जैसिका के, वो एसोसिएट थे अनुराग के। और जब ब्लैक फ्राइडे शुरू हुई तो उन्होंने बोला कि देख तू कास्टिंग संभालेगा। तो पहले कैसा होता था कि चार या पांच छह एडी होते थे, एक असिस्टेंट डायरेक्टर कास्टिंग करेगा, एक असिस्टेंट डायरेक्टर कॉस्ट्यूम देखेगा, एक असिस्टेंट डायरेक्टर सेट देखेगा, ऐसा कुछ हॉलीवुड वाला सिस्टम जो अब है
1: जी,
0: जो एकदम स्पेसिफिक है, वो तब नहीं था कि चार पांच एडी सब डिपार्टमेंट संभाल लो। तो प्री प्रोडक्शन में मेरा काम था कास्टिंग का, शूट के टाइम मैं कंटिन्यूटी लिखता था
1: जी,
0: और पोस्ट में मुझे नहीं इन्वॉल्व किया था, बट मैं अटेंड करता था ऐसे ही। तो जब ब्लैक फ्राइडे तैयार हुई, पोस्ट प्रोडक्शन ऑलमोस्ट खत्म होने आया, तब अनुराग ने मुझे बताया कि अच्छा मैं तुझे कास्टिंग डायरेक्टर की क्रेडिट दे रहा हूँ। तब तक मुझे पता भी नहीं था कि ऐसी क्रेडिट होती है
1: जी।
0: तब मैंने जाके हॉलीवुड की फिल्में देखी और उसमें मैंने देखा कि एक्टर्स के नाम के बाद कास्टिंग करके क्रेडिट आती है। तब मुझे समझा अच्छा देयर इज अ क्रेडिट लाइक दिस इन फिल्म्स। सो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर अनुराग ही मेरा नाम रेकमेंड करता था क्योंकि ब्लैक फ्राइडे को बनने के बाद भी 3 साल लगे रिलीज होने को। तो अनुराग खुद बहुत सारी फिल्मों के डायलॉग्स लिखते थे, तो एक दो जगह मेरा नाम रेकमेंड करता कि इसको ले लो कास्टिंग के लिए।
1: अच्छा।
0: तो ऐसे मुझे एक दो प्रोजेक्ट्स उसके मिले जिसमें वो डायलॉग लिख रहा था और मैं कास्टिंग कर रहा था। तो वहां से थोड़ा कास्टिंग डायरेक्टर की जर्नी शुरू हुई
1: जी। तो कैसी प्रक्रिया रहती है इसकी कास्टिंग की, ये जानना चाहेंगे आपसे?
0: कास्टिंग में क्या होता है कि हमें एक स्क्रिप्ट मिलती है। यूजुअली क्या होता है, अगर एक फिल्म को शुरुआत होने के लिए, अगर छोटी फिल्म नहीं हो, अगर एक मीडियम साइज की फिल्म हो, तो यूजुअली एक दो बड़े स्टार होते हैं। तो जब उनकी कास्टिंग हो जाती है तो आपको एक ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि भाई आप शुरू कर लो काम
1: जी।
0: तो बड़े एक दो जो भी कलाकार है वो रहेंगे, उसके अलावा जो भी डायलॉग वाले कैरेक्टर हैं उनको हमें कास्ट करना पड़ता है। तो हमें वो स्क्रिप्ट मिलती है।

0: शूट से जिसने 10-15 साल थिएटर किया हो, वैसे सब नाम हमारे पास होते हैं तो हम उसमें देखते कि किसका चेहरा ये कैरेक्टर से मिलता है, तो वैसे हम 8-10 शॉर्टलिस्ट करते, उनको वो एक सीन भेजते, फिर वो उनको टाइम देते थे कि भैया 2 दिन बाद आपको 4-5 के बीच में आके ये सीन करना है, फिर वो एक्टर आता है परफॉर्म करता है, फिर उसमें से जो 8-10 जन जो हमने ऑडिशन किए उसमें जो हमें जो बेस्ट 3-4 लगते हैं वो हम डायरेक्टर को दिखाते हैं कि देखो ये 3 बेस्ट थे, आप देखो, उनको अगर नहीं पसंद आए कोई भी तो और लोगों को ऑडिशन करते, वरना वो 3-4 में से कोई एक लॉक कर लेते हैं।
1: तो मतलब ये पूरा एक प्रोसेस रहता है, पहले आपकी नजरों से गुजरती है सारी चीजें कि कौन आपको कौन लगता है उस किरदार में फिट बैठेगा और देन आप आगे लेके जाते हैं। गौतम जी, इतनी बातों के बीच एक गाना तो होना चाहिए।
0: हाँ, एक पुराना गाना जो मुझे बहुत पसंद है वो है हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे, वो भी बहुत पसंद है।
1: जी, सुन लेते।

0: तो गौतम जी, आपने कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर जब अपनी शुरुआत कर ली, हर डायरेक्टर का काम करने का कुछ तरीका अलग होता है उनकी कास्टिंग जब आप करते हैं उनकी फिल्म के लिए, या कास्टिंग का अपना एक ही तरीका है?
1: यूजुअली एक ही तरीका होता है, सिर्फ है कि कोई डायरेक्टर का देखने का नजरिया अलग अलग होता है। एक ही प्रोसेस होता है। अनुराग जैसे डायरेक्टर को 5 सेकंड लगते हैं डिसाइड करने को कि ये एक्टर फिट है कि नहीं उनके लिए। कुछ कुछ डायरेक्टर्स को और टाइम लगता है और उनको ज्यादा ऑप्शंस देखना पसंद करते हैं। कोई थोड़े इंडिसाइसिव होते हैं, लास्ट मिनट में डिसाइड करते हैं। अलग अलग टाइप के हैं, बट प्रोसेस ज्यादातर सेम ही होता है।
0: आपकी ओर से प्रोसेस सेम है और डायरेक्टर्स का नजरिया है।
1: हाँ, बट कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि दो एक्टर्स दोनों परफेक्टली फिट है, समझ नहीं आ रहा है कि किसके पास जाएं। तो जैसे विशाल जी के साथ हुआ था, विशाल भारद्वाज के साथ
0: जी।
1: हम दोनों कंफ्यूज थे कि हु इज द बेटर ऑप्शन, लेकिन सर ने बोला कि इसका इंट्रोडक्शन लगाओ। तो एक्टर का इंट्रोडक्शन देख के उसकी पर्सनैलिटी और क्लियर हो गई, तो जिसका पर्सनैलिटी थोड़ी फिट हो रही थी और ज्यादा
0: जी,
1: वो लॉक हो गया।
0: तो ऐसे मुश्किल मौके
1: ऐसे भी कभी कभी होता है
0: जी।
1: कभी कभी बहुत अच्छे एक्टर्स भी फिट नहीं होते क्योंकि टेक्निकली सिनेमाटोग्राफर के वजह, या अगर हाइट डिफरेंस हो, या जब आप कॉम्बिनेशन कास्टिंग कर रहे हो, एक फैमिली की कास्टिंग कर रहे हो, तो आपको यू हैव टू कीप ऑल द 4 कैरेक्टर्स इन माइंड कि चलो ये 4 जन एक फैमिली के लगने चाहिए। तो भी कभी कभार होता है कि एक अच्छा ऑडिशन नहीं सिलेक्ट होता, वो भी होता है, बट दैट इज रेयर। मोस्टली द बेस्ट ऑडिशन गोज थ्रू यूजुअली।
0: तो अगर कोई बाय चांस सेलेक्ट नहीं होते हैं आर्टिस्ट, आपने जिनका ऑडिशन लिया है और भेजा है, तो उनको बताने का कुछ ऐसा स्पेशल प्रोसेस होता है कि कभी कोई बुरा ना माने, कुछ ऐसा ना लगे उन्हें कि क्यों नहीं सेलेक्ट हुए?
1: देखो, एक्टर को तो बुरा लगता ही है, पर हम उन्हें कोशिश करते समझाने की कि ये इसमें आपकी गलती नहीं है। कि मैं हमेशा एक्टर को तो पर्सनली मत लो, क्योंकि बहुत चीजें जाती है

0: इन एक कैरेक्टर को फाइनल करने में, तो पर्सनली ना ले और ऑडिशन करते रहें विद द सेम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ऑडिशन करें, नेगेटिवली ना ले और आगे बढ़े, क्योंकि ये सब एक्टर के साथ होता है। हर एक्टर को बहुत समय लगता है टू रीच दैट सक्सेसफुल पोजिशन, एवरी एक्टर, आपको वो जर्नी क्रॉस करनी है थ्रू रिपीटेड फेलियर्स।
1: तो कभी ऐसा हुआ कि किसी एक्टर को आपने, मतलब वो सिलेक्ट नहीं हुए हो लेकिन वो बुरा मान गए हो, लेकिन बाद में उन्हें ये एहसास हुआ हो कि नहीं?
0: हाँ, तो ऐसे भी थे एक्टर्स। एक एक्टर है, दो चार साल पहले मैंने उसके साथ तीन चार बार काम किया है, उसका कॉल आया मुझे कि गौतम भाई मैंने फिल्म में असिस्ट किया,
1: हाँ,
0: और मुझे समझ आया कि प्रोसेस क्या है, कैसे कास्टिंग होती है, और मैं खामखा आपको कोसता था कि आपने मुझे कास्ट नहीं किया करके। तो जब एक एक्टर कास्टिंग डिपार्टमेंट में काम करता है कास्टिंग असिस्टेंट की तरह, या एक असिस्टेंट डायरेक्टर के पोजीशन में काम करता है, तो उन्हें पता चल जाता है बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, कैसे कास्टिंग होती है, क्या जाता है डिसीजन मेकिंग में, और उन्हें फिर बेटर समझ आता है। इसलिए मैं हर एक्टर को बोलता हूँ, पर्सनली मत लो, बस अपने क्राफ्ट पे काम करो, कोशिश करो कि आप जो पिछले साल जो आपकी एक्टिंग एबिलिटी थी, इस साल उस पिछले साल से बहुत बेटर होनी चाहिए।
1: हाँ,
0: तो क्राफ्ट पे काम करते रहो, वो मेरी एडवाइस होती है हर एक्टर को, और आपका टाइम आएगा। ये एक 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है, यहाँ लंबी रेस के घोड़े जीतते हैं।
1: पूरे वक्त अपने कला को निखारते रहिए, तराशते रहिए।
0: हाँ,
1: अगर हम देव डी की बात करें जिसकी कास्टिंग आपने की, तो कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए, क्योंकि इसकी कास्ट एक से बढ़कर एक है, बिल्कुल अलग तरह की कास्ट है, कुछ टिपिकल किरदार उसमें बहुत कम है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहा, किस तरह से आपने चुना?
0: आई थिंक अनुराग भी काफी इन्वॉल्व होता है कास्टिंग में, और अभय तो पहले से ही था कास्ट, अभय का ही आइडिया था आई थिंक एक मॉडर्न डे देवदास बनाना, और अनुराग ने और विक्रम ने शायद वो स्क्रिप्ट लिखी, और माही को आई थिंक अनुराग ने ही एक पार्टी में देखा था, जो कल्कि का पार्ट है
1: जी
0: चंदा, उसके लिए बहुत मेहनत गई थी, और जैसा पार्ट था वो पार्ट आज बहुत कॉमन दिखता है, बट 2007 में वो बहुत ही शॉकिंग था एक्टर्स के लिए। तो वो कैरेक्टर पढ़ के ही कितने एक्टर्स भाग जाते थे कि हमको ये ट्राई भी नहीं करना है करके। बट इसमें हमने बहुत एक्टर्स को ऑडिशन किया था, राधिका आप्टे को किया था, रिचा चड्डा, ऑल दीज पीपल वर टेस्टेड, फाइनली वी वेंट विद कल्कि,
1: और बिल्कुल सही लगती हूँ किरदार के, हम जैसा कह रहे थे, ऐसा लगता है वो ही उस किरदार को बहुत अच्छी तरह से निभा सकती हैं। तो यहाँ पर हम एक गाना भी सुन ले, क्योंकि इतनी सारी मेहनत की आपने इसके पीछे, तो एक गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का।
0: हाँ, ये देवडी का गाना है, अमित त्रिवेदी का, साली खुशी आई थिंक।
1: खुशियों को याद करते हुए गाना सुनते हैं आपकी पसंद पर।

तो कभी कभी ऐसा कुछ होता है कि बहुत से किरदार को सोच के ही कहानी लिखी जाती कि इसमें यही व्यक्ति अच्छा लगेगा और उसने मना कर दिया, मान लीजिए उस एक्टर ने। फिर उसके बाद जब किरदार खोजना होता है तो मुश्किल ज्यादा होती है क्या, जैसे किसी

0: खास एक्टर को सोच के लिखा गया हो और उन्होंने कहा कि हमें तो नहीं करना इसमें काम,
1: मतलब आई थिंक ये बात है कि देखो मुश्किल तो होती है लेकिन दूसरा ऑप्शन मिल ही जाता है
0: जी।
1: नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल, लाइक आपको हमेशा एक अच्छा एक्टर मिल ही जाएगा और फिर आप उस कैरेक्टर को थोड़ा सा रीराइट करते हो उसे मन में रख के।
0: और सबसे ज्यादा टाइम किस फिल्म की कास्टिंग के लिए आपको लगा?
1: सबसे ज्यादा वक्त एक हमने एक प्रोजेक्ट के लिए किया जो शेल्व हो गया था, हमने ऑलमोस्ट 4-4.5

तो गौतम जी, जब कास्टिंग की हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग तरह की कास्टिंग होती है, तो मेन कैरेक्टर की, जैसे आपने बताया कि पहले मेन कैरेक्टर्स की जब कास्टिंग हो जाती है, उसके बाद आगे के कैरेक्टर्स आप चूज करते हैं, तो अलग अलग तरह के कैरेक्टर होते हैं, जैसे आपने

0: गौतम जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले जैसे फिल्मों में कास्टिंग होती थी वो कुछ अलग तरह से होती होगी, और अभी जैसे अब सोशल मीडिया का इतना दौर है तो कुछ लोग अपने यूट्यूब चैनल्स भी हैं लोगों के फिल्मों में आने से पहले भी, तो इस तरह से भी कुछ कास्टिंग में चेंजेस आए हैं?
1: मैंने शुरुआत की 2003 में ब्लैक फ्राइडे के साथ। उसके पहले 90s सिनेमा था जिसमें सिनेमा ऐसा बन नहीं रहा था। एक बैंडिट क्वीन छोड़ दो आप, जो तिग्मांशु धूलिया जो पहले आई थिंक हिंदी सिनेमा के कास्टिंग डायरेक्टर थे, वो एक ही फिल्म थी आई थिंक तब की जो इतनी रियल थी। बट अदरवाइज जो हिंदी कमर्शियल सिनेमा बन रहा था 90s में 80s में, उसमें वही होता था कि अनुपम खेर फादर, फरीदा जलाल मदर, ये पर्सन दोस्त, और फिक्स्ड एक्टर्स होते थे। बाद में जब अनुराग और विशाल जी ने मकबूल बनाई या मकड़ी बनाई, जब हनी त्रेहान जो उनके कास्टिंग डायरेक्टर थे, वो टाइम था जब इन डायरेक्टर्स को रियलिस्टिक कास्टिंग चाहिए थी। तब थिएटर का इम्पोर्टेंस सबको लगा कि थिएटर के एक्टर को एनएसडी के एक्टर्स ढूंढो, हमें रियलिज्म चाहिए, जितना रियलिस्टिक परफॉर्मेंस है चाहिए। तो वो 2001-2003 से वो चलता आ रहा है, टिल कोविड वही चल रहा था। अब कोविड के बाद क्या हुआ है कि स्टूडियो के ऑडिशंस कम हो गए, तो अब सेल्फ टेस्ट बहुत होते हैं, तो अब लोगों को आदत भी पड़ गई है कास्टिंग डायरेक्टर्स को कि यू नो सीन भेज दो, एक्टर वहीं अपने घर पे रिकॉर्ड करके भेज दे।
0: मतलब अब स्टूडियो में वो नहीं आते, वो खुद ही
1: वो पता नहीं क्यों, बट मैं अभी भी प्रेफर करता हूँ कि जब प्रोजेक्ट शुरू होगा तो एक स्टूडियो हायर करो, एक्टर को बुलाओ और ऑडिशन करो। हाँ, अगर बंबई के बाहर है वो एक्टर तो फिर आपको सेल्फ टेस्ट ही करना पड़ेगा। बट कोविड के पीक में ये शुरू हुआ, जूम टेस्ट, सेल्फ टेस्ट, तो आजकल एक्टर्स को उसमें भी प्रिपेयर करना चाहिए कि एक अच्छा सेल्फ टेस्ट कैसे दे, उनको फिगर आउट करना चाहिए। यूट्यूब वीडियोज है उसके बारे में, वो शायद देखना चाहिए। और बाकी कास्टिंग असिस्टेंट्स हो या एसोसिएट्स हो या कास्टिंग डायरेक्टर्स हो, क्योंकि हम सब सोशल मीडिया पे हैं, तो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कोई भी इंटरेस्टिंग दिख जाता है तो अभी उनका एटलीस्ट आपको एक कांटेक्ट भी है। इंस्टाग्राम में आपको उनका वर्क ईमेल भी मिल जाता है, तो हम रीच आउट भी करते हैं अगर कोई बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक कैरेक्टर मिल गया हमको कि हाँ ये ऐसा कैरेक्टर बैठता है हमारी फिल्म में, तो हम उसे रीच आउट करते हैं और उन्हें कास्ट करते हैं। इसीलिए मैं आपको पहले भी कह रहा था कि मैं एक्टर्स को बोलता हूँ जिनके पास काम नहीं है फिलहाल, विजिबिलिटी बढ़ाओ, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करिए
0: अपने रील्स या ऐसे अपना काम आगे बढ़ाते हैं।
1: रील्स, ह्यूमर, कुछ भी जो भी आपको पर्सनली बहुत अफेक्ट करता है वो पोस्ट करिए। हर एक कोई कॉमेडी रील्स नहीं कर सकता। जो आपकी स्पेशलिटी है, जो आपका कोर स्ट्रेंथ है, वो पोस्ट करिए, कहीं ना कहीं किसको वो अफेक्ट होगा और वो आपको कॉन्टेक्ट करेगा।
0: जब आप किसी को बुलाते हैं ऑडिशन के लिए, आप बुलाना प्रेफर करते हैं ज्यादा और वो खुद अगर कोई वीडियो बना के भेजते, दोनों में क्या फर्क आ सकता है?
1: देखो, ऑडिशन रूम में कोई कैमरा पकड़ के बैठा है, एक असिस्टेंट आपको क्यूज दे रहा है, दूसरा परफॉर्मेंस देख रहा है, चार पांच जन की टीम होती है एक प्रोजेक्ट पे, तो एक पूरी टीम होती है जिसमें हर एक का एक अलग काम होता है।

0: वो कास्टिंग एसोसिएट या कास्टिंग डायरेक्टर होगा, वो आपको गाइड करेगा, ऐसे नहीं ऐसे, करेक्ट करेगा आपको। लाइव उधर आपका बेटरमेंट होता जाएगा। घर पे आप सेल्फ टेस्ट करोगे, आप भेजोगे, फिर जब किसको टाइम होगा देखने का तब वो देगा, फिर वो मैसेज पे आपको रिप्लाई करेगा, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, फिर आप वापस करोगे। अगर आपको कोई क्यू देने वाला दोस्त नहीं मिला घर पे, तो आपके मम्मी पापा क्यूज देंगे, जो बहुत खराब क्यूज होंगे मोस्टली। तो प्रॉब्लम्स होते हैं सेल्फ टेस्ट में, बट मैंने ऐसे भी देखा कोई दो तीन ऑडिशन सेल्फ टेस्ट इतने बढ़िया है क्यों, एक्टर्स बहुत स्ट्रांग थे।
1: बेसिकली अगर वो आपके सामने आते हैं तो आप उन्हें उनके कैरेक्टर के बारे में भी समझा सकते हैं, और
0: बहुत इजी हो जाता है स्टूडियो में। हाँ। बहुत इजी हो जाता है। सेल्फ टेस्ट में क्या है, एक्टर को सब कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, जो स्टूडियो में होता है वो आपको घर में करना पड़ेगा। आपको चार दोस्त लगेंगे, एक दोस्त आपको रिकॉर्ड करेगा, दूसरा दोस्त आपको क्यूज देगा, तीसरा आपको बताएगा ऐसे नहीं ऐसे कर। ये स्टूडियो में बढ़िया हो जाता है,
1: और वो भी निर्भर करता है कि आपके दोस्त कितना ज्यादा जुड़े हुए उस क्राफ्ट से।
0: अगर वो खुद एक्टर्स है तो शायद कुछ ठीक ठाक निकल जाएगा।
1: और जैसा कि आप बोले थे कि सोशल मीडिया पर भी रीच आउट करते हैं आप लोग, तो फिर बहुत से लोग है, वही बात है कि तो किस तरह से पहचाने कि जो हमें बोल रहे हैं कि आपको कास्ट किया जा सकता है या आपने टेप भेजी इस तरह से बोल रहे हैं अगर कोई, तो कितने जेन्युइन है, कितने रियल हमें वो चीज मिल रही है?
0: देखो सोशल मीडिया में हम रीच आउट करते हैं जब हमें कोई प्रोफाइल ऐसी दिखती है जो हमारे स्क्रिप्ट में बैठ रहा हो, कोई ह्यूमरस कैरेक्टर हो या कुछ हो, वो वहां हमको बाय चांस दिख गया और वो वही है जो कैरेक्टर है, अगर वो इज वेरी और ही और शी इज वेरी क्लोज टू दैट कैरेक्टर, देन वी रीच आउट कि हाँ भाई हमारे पास ये है, आप अब स्टूडियो में आके ये परफॉर्म कीजिए, ये हमारे सीन पे करिए। वो अब वो अच्छी तरह कर पाए नहीं कर पाए वो एक अलग बात है,
1: पर जानना हम ये चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी आम इंसान को जो कि रोज रील बनाता है उसका कोई एक कैरेक्टर आपको अपने कैरेक्टर के इर्द गिर्द लग रहा है, तो आपने उसे रीच आउट किया, लेकिन आप तो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि नहीं है, जैसे कि आपने कहा कि वो पता करना पड़ता है कि कौन रियल है कौन नहीं है, तो वो किस तरह से पता कर सकते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन हो?
0: नहीं, उनको तो फिर पता करना पड़ेगा। एक तो आजकल सब कास्टिंग डायरेक्टर्स के इंस्टाग्राम पेजेस है, आई थिंक आप इंडियन कास्टिंग डायरेक्टर्स या हिंदी फिल्म कास्टिंग डायरेक्टर टाइप करोगे तो आपको 5-10 नाम तो आ ही जाएंगे। तो आज जो भी सोशल मीडिया पे है आपको पता ही चलेगा, इंस्टाग्राम में आपको सब सारी इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी, आप कितने कास्टिंग डायरेक्टर्स है कौन है सब पता चलता है। अभी सब क्रेडिट्स देखते हैं, अगर आप फिल्म की क्रेडिट देखोगे कास्टिंग में कोई जो कास्टिंग डायरेक्टर का नाम है वो नाम टाइप कर लोगे उसका इंस्टाग्राम पेज मिल जाएगा, फिर आप देखिए उसके कोई असिस्टेंट टीम वाले कौन है या उसे मैसेज भेजिए, देखिए रीच आउट करिए। अगर आप बंबई में हैं तो आप ट्रेंड एक्टर हो तो आपको इवेंचुअली पता चलेगा कि मैक्सिमम काम आरामनगर वर्सोवा में हो रहा है
1: जी।
0: तो वहां पहुंच जाइए, वहां पे पता करिए कौन कौन कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, उनके ऑफिसेज में जाइए, दरवाजा खटखटाइए, इंट्रोडक्शन के लिए बोलिए कि मुझे इंट्रोडक्शन देना है। कोई कोई कास्टिंग डायरेक्टर्स एडवर्टाइज करते हैं अपने इंस्टाग्राम पे कि इस दिन ये बजे से ये बजे तक हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो 200-200 एक्टर्स पहुंच जाते हैं इंट्रोडक्शन देने, तो उनकी डेटाबेस में आ जाते हैं।
1: तो जब भी आपको जरूरत हो आप उसमें से किसी को चूज कर सकते हैं,
0: चूज करते बुला सकते हैं फॉरेन ऑडिशन।
1: अगर आपकी फिल्मों की बात करें तो कुछ फिल्मों में आपने बिल्कुल ही अलग तरह की कास्टिंग की है जो कभी पहले उस तरह से नजर नहीं आए, जैसे पटाखा की अगर हम बात करें तो उसमें भी जो भी सब कास्ट है उनको कभी हमने उस तरह से कभी देखा ही नहीं, तो ये कैसे आप सोचते हैं कि वो किरदार में फिट बैठेंगे वो एक्टर जिन्होंने कभी वैसा नहीं किया?
0: आई थिंक वो ही है, एक्टर का स्ट्रेंथ ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। कैपेबिलिटी अगर आपको पता हो कि ये एक अच्छा एक्टर है तो इसको हम टेस्ट करते हैं। बेसिकली हमने बहुत लोगों को वो दोनों लड़कियों के लिए टेस्ट किया था और फाइनली सानिया और राधिका हुई, और वो दोनों बहुत ही अच्छी एक्टर्स हैं। इवन दो दोनों दिल्ली की हैं, बट फिर भी उन्होंने वो एक्सेंट और वो राजस्थानी बोली बहुत बढ़िया पकड़ी उन्होंने। उनका वर्कशॉप भी हुआ था, बट जिन्होंने शॉर्ट स्टोरी लिखी थी वो उनके घर पे रहे थे दोनों,
1: अपने किरदार को पकड़ने के लिए
0: लैंग्वेज पे ट्रेन कर रहे थे। तो एक अच्छा एक्टर होता है वो फिर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है इनटू द कैरेक्टर।
1: वैसे सांड की आंख की अगर हम बात करें तो इसने भी जब किरदार चुना तो उसमें भी आपने ऐसा पहले से ही नहीं सोचा था कि जब वो बुजुर्ग हो जाएंगी तो दूसरे किरदार लेंगे?
0: नहीं, भूमि और तापसी की कास्टिंग हो चुकी थी जब वो दोनों कास्ट हुए तो फिल्म बनी। आई थिंक डायरेक्टर वांटेड कि एक्चुअली सीनियर सिटीजन्स को कास्ट करे, बट रियलिटी ऑफ फिल्म मेकिंग ऑफ फंडिंग इज वेरी डिफरेंट। तो आई थिंक दे वर नॉट गेटिंग फंड्स टू विद अ कास्ट ऑफ सीनियर सिटीजन्स, हेंस दिस वाज डन।
1: कभी ऐसा होता है कि आपने किसी को चूज किया हो, आपको लगा हो कि ये उस किरदार में ज्यादा अच्छा बैठेगा फिट होगा, लेकिन फिर आगे जाके उन्हें ऐसा लगा हो निर्माता निर्देशकों कि हमें ये नहीं चाहिए?

0: एक बार हुआ था एक फिल्म में, मैं फिल्म नहीं बोलूंगा बट बताऊंगा नहीं कौन सी फिल्म है, मैं अच्छा दोस्त है वो, बट उसको मैंने प्ले में देखा था और एक रिहर्सल में देखा था और उसका ऑडिशन इतना इनक्रेडिबल था कि मैंने अनुराग को दिखाया और अनुराग बोला हाँ करते हैं इसको कास्ट। लेकिन उसने कभी कैमरा पे काम किया नहीं था, सिर्फ थिएटर किया था वो भी कॉलेज में। और जब वो उसका पहला दिन शूट का था, और ये मैं बात कर रहा हूँ 2007-08 की बात कर रहा हूँ, जब बड़े कैमरास होते थे, लाइट्स भी बहुत बड़ी होती थी, अब लाइटें भी छोटी हो गई है कंपेरेटिवली, उतना साइज नहीं होता है लाइट्स का। तो अगर आपको HMI लाइट्स लगाओ और 50 लोग आपको देख रहे हैं, वो फ्रीज हो गया था, वो परफॉर्म नहीं कर पाया था पहले दिन। फिर बाद में उसे कॉन्फिडेंस आया, उसको ये किया और वो उसने किया बट नॉट टू हिज एबिलिटी। फिर उसने अपने आप पे काम किया और फिर वो अच्छे काम करने लगा, उसने काफी फिल्में की बाद में। लेकिन ये हुआ था, उसके बाद मेरा लेसन था कि भाई सिर्फ थिएटर में बहुत बढ़िया हो बट लेकिन अगर कैमरा का आइडिया नहीं है
1: जी,
0: तो उसे पहले थोड़ी ट्रेनिंग लगेगी। ऐसे रॉक लो मत, या जब तक आपके पास ऑप्शन नहीं, बट ऐसे भी है जिन्होंने कभी थिएटर नहीं किया और कुछ भी नहीं किया, वो लोग छा गए कैमरा पे
1: कोई बिना ट्रेनिंग के, वो
0: बिना
1: आए।
0: दो बच्चे थे, स्लम के बच्चे थे, उनको अनुराग की एक शॉर्ट फिल्म के लिए कास्ट किया था, सलाम बालक ट्रस्ट जो मीरा नायर ने शुरू किया था, तो वहां के दो बच्चे कास्ट किए थे, उसमें से एक तो इतना नेचुरल था जिसने कुछ नहीं किया पहले भी, तो वो भी हो सकता,
1: तो वो आप कह सकते गॉड गिफ्टेड है।
0: हाँ वो गिफ्टेड था, वो कॉन्फिडेंट था, नेचुरल था, बढ़िया था वो।
1: तो आप सेट पे भी मौजूद रहते हैं या आपका काम सेट के बाहर का ही रहता है?
0: यूजुअली जरूरत नहीं पड़ती है बट जहाँ जब डायरेक्टर्स पसंदीदा डायरेक्टर्स हैं या जब ज्यादा रिलेशन है तो मैं जाता हूँ सेट पे जाता
1: हूँ। बट आपका सपना तो सेट में ही रहने का है, हालांकि जैसे आपने बताया।
0: हाँ मेरा सपना तो डायरेक्ट करना ही है। अब मैं एक नई स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, पहली दो स्क्रिप्ट बना नहीं पाया, अब एक नई स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, होपफुली वो बन जाए।
1: तो आप अपनी स्क्रिप्ट पे काम करें तो आप क्या पहले से किसी एक्टर को ऐसा मन में सोच के ही बना रहे हैं या आप उसे बाद में?
0: पहले स्क्रिप्ट तो कंप्लीट करूंगा फिर कास्टिंग पे आऊंगा।
1: तो ये राइटिंग वाला पक्ष कब से आपका सामने आया? आपने डायरेक्शन तो आपने कहा।
0: हाँ वो जब मैंने 5 साल के लिए बीच में कास्टिंग छोड़ दी थी।
1: अच्छा।
0: तो घनचक्कर थी 2013 में मैंने कास्ट की थी, उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट रोक ही दिया था। फिर मैंने एक स्क्रिप्ट पे काम किया जो नहीं बन पाई, फिर मैंने दूसरी स्क्रिप्ट डेवलप की राइटर्स के साथ, फिर वो भी नहीं बन पाई, फिर एक बुरा दौर रहा मेरी लाइफ में, फिर उधर से कैसे तैसे निकल आया मैं और फिर मैंने फिर से कास्टिंग शुरू की। मैंने बोला कि चलो फिर से कास्टिंग शुरू करते हैं, फिल्म कभी ना कभी तो बना लूंगा।
1: तो इस जो ये दौर रहा उसके नाम कोई गीत बताना चाहेंगे?
0: जिंदगी कैसी है बहेली।
1: ठीक है, तो सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गाना।
2: जिंदगी कैसी है पहेली हाय।

तो गौतम जी, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए, इतनी सारी बातें आपने हमसे की हैं, आखिर में अगर आप कोई संदेश देना चाहें हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं उनको, कुछ फिल्म इंडस्ट्री में आने चाहते होंगे।

0: या कोई कास्टिंग डायरेक्टर बनना चाहते होंगे तो उनके लिए कोई एक संदेश अगर आप देना चाहें।
1: वही जो मैंने एक्ट्रेस के लिए कहा कि आप ट्रेन करके आइए, ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, पढ़िए फिल्मों की किताब, पढ़िए फिल्म मेकिंग की किताब, पढ़िए एक्टिंग की किताब, पढ़िए कास्टिंग डायरेक्टर जो हॉलीवुड के फेमस है उनके बारे में पढ़िए, उनके प्रोसेस आज के टाइम में इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। तो जितना आप अपने आप को एजुकेट करके आएंगे उतना बेटर होगा आपको जब आप बॉम्बे आए। बट हर एक जो भी इंसान है जो फिल्म इंडस्ट्री में जुड़ना चाहता है उसको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा वो वाली फील्ड में। अगर आप एडिटर बनना चाहते तो यूट्यूब पे सीखिए कोर्स, खुद प्रैक्टिस करिए, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, FTI प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, कुछ भी करिए, ट्रेन करके आइए। दैट्स माय बिगेस्ट एडवाइस।
0: बस बिल्कुल, मतलब तैयार होके ही आइए आप।
1: हाँ, अनप्रिपेयर्ड मत आइए, फिर आपको एक्सप्लॉइट किया जाएगा।
0: गौतम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जो कास्टिंग से रिलेटेड बातें थी जो हमें पता ही नहीं थी कि किस तरह से चुना जाता है एक किरदार को, बहुत ही अच्छी तरह से आपने विस्तार में हमें बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विविध भारती के स्टूडियो में आए और आपने हमसे बातचीत की।
1: जी बहुत मजा आया आपके साथ बात करने का, थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए।
0: धन्यवाद।
2: बॉम्बे टॉकीज में अभी आप सुन रहे थे कास्टिंग डायरेक्टर गौतम कृष्ण चंदानी से नेहा शर्मा की बातचीत, संपादन सहयोग प्रभा भटनागर का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता

0: सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
2: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
1: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
3: हम सब ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
4: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
3: ICU में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
4: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
3: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नई दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और कड़े इंतजाम किए हैं। नई दिल्ली में कई जांच चौकियों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस उपायुक्त कुमार अभिषेक ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के लिए एहतियाती जांच की जा रही है। यातायात पुलिस के उपायुक्त विकास कुमार ने कहा कि नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात नियंत्रण के कारण वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जा रहा है। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने यात्रियों के लिए परामर्श जारी कर यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी के नेता

0: देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारे पर ये कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के नेता प्रदर्शन कर लोगों को लगातार परेशान कर रहे हैं।
1: हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं करते हैं, स्वाभाविक है, लोकतंत्र में होना भी चाहिए, लेकिन आपने अपनी हार के कारण सड़क के प्रोटेस्ट को वेपनाइज कर लिया है। आम आदमी पार्टी के लिए शैडो बॉक्सिंग करने वाले CJP और बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग आ गए, तो ममता जी ने कहा हम क्यों पीछे हैं, और बीच में CPI CPM भी अपना चले आए। ये जो हारे हुए हताश लोग हैं, ये दिल्ली की जनता को पिछले 3-4 दिन से परेशान कर रखा है।
0: श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने यह साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वाले लोगों की कोशिशों को नाकाम कर दिया है। सरकार ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट से फैलाए जा रहे गुमराह करने वाले वीडियो को गलत बताया है। इस वीडियो में झूठा दावा किया गया था कि दिल्ली पुलिस ने राजधानी में विरोध प्रदर्शन के दौरान गोली चलाई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो जंतर मंतर पर हो रहे विरोध प्रदर्शन से जुड़ा नहीं है। ये फुटेज पुराना है और इसे गुमराह करने वाले दावे के साथ साझा किया जा रहा है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर क्षेत्र में दंगों के मामले में दंगे भड़काने का दोषी ठहराया। सजा की अवधि पर बहस के लिए मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। इससे पहले जुलाई में दिल्ली की एक अदालत ने दंगों के दौरान आसूचना ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में हुसैन और 4 अन्य लोगों को दोषी ठहराया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आधुनिक युद्ध और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत अपने पड़ोसी देशों और दुनिया भर के घटनाक्रम और उनके रणनीतिक प्रभाव पर बारीकी से नजर रख रहा है। जोधपुर में उन्होंने कहा कि स्थापित विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है, जबकि उभरती वैश्विक व्यवस्था का स्वरूप अनिश्चित बना हुआ है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने कहा है कि परिवहन और पुलिस विभाग के विशेष प्रयासों और कार्य योजनाओं से राज्य में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की मृत्यु दर में कमी आई है। उन्होंने बताया कि पीएम राहत योजना के अंतर्गत सड़क हादसे के शिकार लोगों की मदद करने वालों को 25,000 रुपए तक का पुरस्कार दिया जाता है। आकाशवाणी रायपुर के उपनिदेशक विकल्प शुक्ला का आज दोपहर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। भारतीय सूचना सेवा के 1993 बैच के अधिकारी श्री विकल्प शुक्ला छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक प्रसारण के प्रमुख स्तंभ थे। श्री शुक्ला की पहली नियुक्ति पत्र सूचना कार्यालय दिल्ली में हुई थी। उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी सहित कई मीडिया इकाइयों में कार्य किया। आकाशवाणी परिवार उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है। मौसम विभाग ने बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में कल तक गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 94वां संस्करण कल वाराणसी में नमो घाट से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित दीक्षा मंडप तक आयोजित किया जाएगा। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया इसमें शामिल होंगे। ये पहल नशा मुक्त युवा विकसित भारत के विषय पर केंद्रित है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ 100.2 FM మనస్సు నిండా ఇయాల్టి రేపటి కార్యక్రమాల వివరాలు వాటి సమయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఇయాళ ఈ పొజ్జమట్టు ఇంకొంచెంసేపట్లో 6:20 మన పురాణాలు కార్యక్రమంలో నిర్మల్ జిల్లా ముక్తాపూర్కు చెందిన గజల రాజేశ్వర బృందం వినిపించే ధర్మాంగద చరిత్ర చిందు యక్షగానం 4వ భాగం వింటారు. 6:45 జానపద గీతాలు ఆదిలాబాద్ గ్రామీణ మండలం యాపల్గూడ కొత్తగూడ గ్రామానికి చెందిన ఉష్కమల నారాయణ బృందం పాడిన జడకొప్పు కోలాటం పాటలు 2వ భాగం వింటారు. కిసాన్ వాణి కేంద్ర వ్యవసాయ రైతు సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ వారి ప్రాయోజిత కార్యక్రమంలో కంది పంట ప్రాసెసింగ్ మరియు ఎగుమతి అవకాశాలు గురించి ఆదిలాబాద్ వ్యవసాయ కళాశాల అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ డి కుమారస్వామితో ముచ్చట ఉంటుంది. వీరితో ముచ్చట పెడతారు టి సౌమ్య. ఇంకా రైతు అంతరంగంలో మేకల పెంపకం అనుభవాలు గురించి గుడిహత్నూర్ మండలం సీతాగొంది గ్రామానికి చెందిన రైతు

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई विमान में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के जंतर मंतर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। भाजपा ने कहा, उपचुनाव में पार्टी की जीत लोकतंत्र में विश्वास की पुनः पुष्टि करती है। विपक्ष पर विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से जनजीवन बाधित करने का आरोप लगाया। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोग मारे गए और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 16 अक्टूबर से प्रतिदिन 99% नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखने के निर्देश दिए। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉ. जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क्ड रेजोल्युटली
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
0: अफ्रीका के तीन देशों की यात्रा के आखिरी चरण में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों के बीच व्यापार लगभग 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान की आलोचना की।
3: ये अफसोस की बात है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र मंच का इस्तेमाल भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ फैलाने के लिए कर रहा है। हम पाकिस्तान से मांग करते हैं कि वो अपने गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन पर रोक लगाए। वहाँ की जनता पाकिस्तान के अवैध सैन्य कब्जे, दमन, क्रूरता और संसाधनों के शोषण के खिलाफ खुलकर विद्रोह कर रही है।
0: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई के विमान में पिछले महीने

0: उड़ान के दौरान कॉकपिट में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। गुजरात निवासी कैप्टन स्मिथ पर पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में उनके सह पायलट ने चाकू से हमला किया था। घायल होने के बावजूद यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन मच्छर के साहस की दुनिया भर के कई नेताओं ने सराहना की। इस उड़ान में 27 बच्चों सहित 174 यात्री सवार थे। भारत ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते को बदलती परिस्थितियों के मद्देनजर अंतिम रूप दिया जाएगा। नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि फरवरी में घोषित इस समझौते के प्रारूप की अमेरिका की शुल्क नीति में बदलावों के बाद पुनः समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत अधिक अनुकूल शुल्क शर्तों के लिए दबाव बना रहा है ताकि अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पाद प्रतिस्पर्धी बने रहें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग।

0: SEBI Investor जागरूकता पहल। जानकारी के लिए SEBI Investor वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड SEBI सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कल CJP को विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हिरासत में लिए गए लोगों को धीरे धीरे रिहा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ CJP के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी कानून व्यवस्था के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए तैनात किया गया है। कानून और व्यवस्था संबंधी विशेष पुलिस आयुक्त देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने लोगों से किसी भी अवैध विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी CJP के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारों पर ये सब कर रहे हैं।
2: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर ये विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत की विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे हैं। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पे आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मंसूबे को पानी फेरेंगे।
1: पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के नेता प्रदर्शन करके दिल्ली के लोगों को लगातार परेशान कर रहे हैं।
3: हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं करते हैं, स्वाभाविक है, लोकतंत्र होना भी चाहिए, लेकिन आपने अपनी हार के कारण सड़क के प्रोटेस्ट को वेपनाइज कर लिया है। आम आदमी पार्टी के लिए शैडो बॉक्सिंग करने वाले CJP और बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग आ गए, तो ममता जी ने कहा हम क्यों पीछे हैं, और बीच में CPI CPM भी अपना चले आए। ये जो हारे हुए हताश लोग हैं, ये दिल्ली की जनता को पिछले 3-4 दिन से परेशान कर रखा है।
1: श्री प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वालों की कोशिशें नाकाम कर दी हैं। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़काने के मामले में दोषी ठहराया। सजा की अवधि पर बहस के लिए अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। इससे पहले जुलाई में दिल्ली की एक अदालत ने दंगों के दौरान आसूचना ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में हुसैन और 4 अन्य लोगों को दोषी ठहराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मूल मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं और उनका यह सफर लगातार जारी है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष

0: 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। आज विशेष श्रृंखला में बात पीएम जनधन योजना की, जिसकी सफलता प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साकार होने का प्रमाण है।
1: प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। यह योजना भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। इस योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं और इसके जरिए हर परिवार को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने में मदद मिली है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं का पैसा अब सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाने का एक अहम माध्यम बन गई है। पिछले महीने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जनधन योजना ने भारत की बैंकिंग व्यवस्था को बदल दिया है और आज देश का लगभग हर परिवार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुका है।
2: मार्च 2014 तक देश की 50% से ज्यादा आबादी के पास बैंक अकाउंट तक नहीं थे और जो बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे वो ज्यादातर गरीब थे। हम जन धन स्कीम लेकर आए और बीते 12 वर्षों में जन धन योजना की वजह से करीब 60 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले। आज देश में लगभग हर परिवार बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है।
1: गुजरात के मुकेश नाइक ने बताया कि उन्हें सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ सीधे उनके जनधन खाते में मिल रहा है।
3: मेरा नाम मुकेश भाई नायका है, मेरा जनधन अकाउंट है और मेरी माँ का भी अकाउंट है। सरकार तरफ से जो भी मिलती है सहाय वो मेरे खाते में तुरंत आ जाती है और बाद में मैं अपना रुपये क्रेडिट कार्ड भी यूज करता हूँ, उससे भी मुझे फायदा है।
1: दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजनाओं में शामिल जनधन योजना से लाखों गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए बैंक में खाता खोलना और बैंक की सुविधाओं का लाभ लेना आसान हो गया है। इस योजना के तहत जनधन खाता धारक को 10,000 रूपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिल रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों को 16 अक्टूबर से आवश्यक नकद आरक्षित अनुपात CRR को मौजूदा 90% के बजाय 99% पर बनाए रखने की आवश्यकता होगी। ये कदम बैंकिंग प्रणाली में मौजूदा तरलता स्थिति की समीक्षा के बाद उठाया गया है। ये बैंकिंग प्रणाली को तरलता कम करने में सहायक होगा, जो 8 अक्टूबर तक 3,88,000 करोड़ रुपए के अधिशेष पर थी। एशिया का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी सम्मेलन 4 दिवसीय इंडिया मोबाइल कांग्रेस आज संपन्न हो गया। 4 दिन के इस आयोजन में निवेश बढ़ाने, नीति ढांचे को सशक्त करने तथा सस्ते, विश्वसनीय, सुदृढ़ और समेकित डिजिटल संपर्क का विस्तार करने के लिए सरकारों, उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में मजबूत सहयोग की आवश्यकता का उल्लेख किया गया। इस सम्मेलन ने सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वैश्विक मंच प्रदान किया। आकाशवाणी रायपुर के उपनिदेशक विकल्प शुक्ला का आज दोपहर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 58 वर्ष के थे।
4: भारतीय सूचना सेवा के 1993 बैच के अधिकारी विकल्प शुक्ला छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक प्रसारण के प्रमुख स्तंभ रहे थे। समाचार संचालन और रिपोर्टिंग में उनका असाधारण योगदान था। श्री शुक्ला की पहली नियुक्ति पत्र सूचना कार्यालय दिल्ली में हुई थी। उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी सहित कई मीडिया इकाइयों में कार्य किया। उन्होंने भोपाल में भी सेवाएं दी और करियर के अंतिम 25 वर्ष रायपुर में व्यतीत किए। अपने पूरे करियर में वे सार्वजनिक प्रसारण का प्रमुख चेहरा रहे। उनके परिवार में पत्नी और दो विवाहित बेटियां हैं। आकाशवाणी परिवार उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है।
0: रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोगों की मौत हो गई है और 16 अन्य घायल हुए हैं। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की हवाई बमबारी ने ज़ापोरिजिया के आवासीय इमारतों को भी निशाना बनाया। रूस और यूक्रेन लंबी दूरी के हवाई हमले कर रहे हैं। दोनों देशों की सेनाएं 4.5 वर्ष से अधिक समय से सीमा पर डटी हुई हैं। रूस का डीजल खरीदने संबंधी समझौते की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के एक दिन बाद ये हमले हुए। ये समझौता यूक्रेन के साथ युद्ध तथा अमेरिका में मध्यावधि चुनावों के पहले तेल की बढ़ती कीमतों को काबू करने के प्रयास के मामले में रूस पर वर्षों के अमरीकी दबाव में आए बदलाव को दर्शाता है। पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास

दिया है। वे इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। 43 वर्षीय सोनोवाल सिंगल सेमीफाइनल में स्कॉटलैंड के इयान मैकलिन से हार गए। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा और पश्चिमी राजस्थान में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई विमान में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन स्थल पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। भाजपा ने कहा, उपचुनाव में पार्टी की जीत लोकतंत्र में विश्वास की पुनः पुष्टि करती है। विपक्ष पर विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से जनजीवन बाधित करने का आरोप लगाया। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या में 15 लोग मारे गए। और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 16 अक्टूबर से प्रतिदिन 99% नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी है, अखिल भारतीय संगीत के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज आप इस कार्यक्रम में कर्नाटिक शैली में गायन सुनेंगे। आज की कलाकार हैं अर्चना उपाध्याय।
1: दिस इज आकाशवाणी, वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। इन टुनाइट्स कॉन्सर्ट यू आर गोइंग टू लिसन टू अ कर्नाटिक वोकल बाय अर्चना उपाध्याय।
0: अर्चना उपाध्याय एक प्रसिद्ध कर्नाटिक शास्त्रीय संगीत गायिका हैं और आकाशवाणी की ए ग्रेड कलाकार हैं। आप विदुषी वसंत लक्ष्मी हेब्बार और डॉक्टर वी अरविंद हेब्बार से अपना संगीत प्रशिक्षण शुरू किया और थोड़े समय तक आप स्वर्गीय श्रीमती रंजनी हेब्बार से भी शिक्षा हासिल की। आजकल आप संगीत गुरु चित्रवीणा एन रविकिरण के मार्गदर्शन में शिक्षा ले रही हैं। अपनी सहगायिका समन्वी के साथ आप लतांगी सिस्टर्स के रूप में प्रसिद्ध हैं। आप भारत और अमेरिका में 200 से अधिक संगीत समारोहों में प्रस्तुति दी है, जिनमें द म्यूजिक एकेडमी चेन्नई, क्लेवलैंड त्यागराज महोत्सव और शिकागो त्यागराज उत्सव जैसे प्रतिष्ठित मंच शामिल हैं। इसके अलावा आप भारत, दुबई और जर्मनी में प्रसिद्ध कथावाचक श्री विनय वाराणसी के साथ भी कई प्रस्तुतियां दी है। अर्चना को MS सुब्बलक्ष्मी फेलोशिप अवार्ड, युवा संगीत सम्राट प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार और राग लय प्रभा जैसे कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा जा चुका है। संगीत के साथ साथ आप कीर्तनास ऑफ कर्नाटक पुस्तक का सह लेखन किया है और दासार्चने प्रोजेक्ट के तहत 101 कृतियों की रिकॉर्डिंग भी की है।
1: अर्चना इज अ प्रोमिनेंट कर्नाटिक वोकल आर्टिस्ट एंड एन ए ग्रेडेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी। She began her music training in 2008 under Vidwan Vasantalakshmi Hebbar and Dr. V. Aravinda Hebbar. She also had a brief training period under late Srimati Ranjani Hebbar and has been continuing her advanced learning under the guidance of Chitraveena N. Ravikiran at present. Alongside her duet partner Samanvi, together known as the Latangi Sisters, she has performed over 200 concerts across India and the US, including prestigious venues like the Music Academy Chennai, Cleveland Tyagaraja Festival, and Chicago Tyagaraja Utsavam. She has also collaborated with renowned storyteller Sri Vinay Varanasi across India, Dubai, and Germany. Archana's accolades include the MS Subbulakshmi Fellowship Award, First prize in the Yuva Sangeeta Samrat competition and the Raga Laya Prabha Award. Additionally, she co-authored the book Kirtanas of Karnataka and recorded 101 compositions under the Dasarchane project.
0: आज के संगीत कार्यक्रम में आपको वायलिन पर साथ दे रही हैं तन्मयी उपंगड़ा और मृदंगम पर हैं सुनाद कृष्णा अमय और मोरसिंग पर हैं बालकृष्णा होसमने। अर्चना उपाध्याय अपने कार्यक्रम की शुरुआत लालगुड़ी जी जयरामन जी की एक रचना एंतो प्रेमा वर्णा से कर रही हैं, जो राग बहुदारी और आदि ताल में निबद्ध है।
1: इन टुनाइट्स कॉन्सर्ट शी विल बी अकंपनीड ऑन द वायलिन बाय तन्मयी उपंगड़ा, ऑन द मृदंगम बाय सुनादा कृष्णा अमाय एंड ऑन द मोरसिंग बालकृष्णा होसमने। अर्चना उपाध्याय विल बिगिन हर कॉन्सर्ट विद एंतो प्रेमा, a varna in raga bahudari set to aditala composed by Lalgudi G. Jayaraman.

0: राग बहुदारी के बाद अब प्रस्तुत है पुरंदरदास की एक रचना धूप आरती, जो मोहन कल्याणी राग तथा आदिताल में निबद्ध है।
1: नाउ यू विल लिसन टू अ कॉम्पोजिशन बाय पुरंदरदासा, धूप आरती सेट इन राग मोहन कल्याणी एंड आदिताला।

0: अब प्रस्तुत है मुत्तुस्वामी दीक्षितर की रचना श्री गुरु गुहा, जो राग उदय रविचंद्रिका तथा रूपक ताल में निबद्ध है।
1: नाउ यू विल लिसन टू अ कॉम्पोजिशन बाई मुत्तुस्वामी दीक्षितर, श्री गुरु गुहा, विच इज सेट इन राग उदय रविचंद्रिका एंड रूपक ताला।

0: अपनी कार्यक्रम को जारी रखते हुए अर्चना उपाध्याय अब प्रस्तुत करेंगी ऊतुकाडु वेंकट रवि की रचना रसिक महोत्तमा, जो राग सरसांगी तथा मिश्र चापुताल में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हर कॉन्सर्ट, अर्चना उपाध्याय विल नाउ प्रेजेंट रसिक महोत्तमा, अ कॉम्पोजिशन ऑफ ऊतुकाडु वेंकट कवि, विच इज सेट इन राग सरसांगी एंड मिश्र चापुताला।

0: ये था तन्यावर्तनम, जिसे प्रस्तुत किया मृदंगम पर सोनाद कृष्णा अमय तथा मोसिंग पर बालकृष्ण भस्म ने। अर्चना उपाध्याय अपने कार्यक्रम का समापन त्यागराज की एक रचना चल रे रामा से कर रही हैं, जो राग आहिरी तथा मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
1: That was तन्यावर्तनम।